0: Lim hijab.
1: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबर्रुज से मुराद बनाव सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ, और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अगना अयौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रुज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रुज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार मसलन देवर और जेठ हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता. تو بہت

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت

0: है साहब, जमहूरियत में
1: यह
0: आपकी टांग
1: जमहूरियत
0: खींचू, मैं आपकी टांग खींचू, मैं बोलूं कि जमहूरियत का हुसन है यहाँ पर। हम अगर आप जैसे बात कर रहे थे फैसल भाई से, पहले बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, तो हम एक बंदे की जो मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे इख्तलाफ करते हैं, आपका हक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुनना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ये आपकी बेवकूफी है। तो हमारी तो सियासी पार्टियों में इतना शऊर नहीं है, अकल नहीं है, यहाँ पर इतने वो बहस करते हैं, इतना आपसे लड़ने झगड़ने पर आ जाते हैं, तो अगर हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, हाँ उसमें हम नहीं मानते कि हमें हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा है ना, आपकी तरफ से होगा। तो ये हमारी छोटी छोटी सियासी पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तानी पार्टियां मौजूद है, वो एक दूसरे से इतना इख्तलाफ रखती हैं, और वो अपने आप को क्या कहते हैं, बादशाह की कुर्सी उठाने की कोशिश करती हैं, टांगे खींच रही हैं, टांगे खींचती रहती हैं, मिलना जुलना कुछ भी नहीं होता। तो वो हम इतने डेनमार्क पूरे 40 साल की कौम की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी मुझे बस यही कहना है कि अभी जब हम डेनमार्क में रहते हैं, तो जो भी अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अगर अगर खामियां है तो उसके ऊपर निशानदेही करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के हालात देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि, अब मैं वो बात करूंगा कि पाकिस्तान, आप रहे साहब भी गवाह हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के पास पहुंच गया था। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि वक्त आया कि पाकिस्तान का जो फैसले करने वाला मुल्क बन गया, चौधरी बन चुका है, ये पाकिस्तान बना है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और पाकिस्तान बना है, इसमें किसी का, मैं वो एक बंदे को गारंटी कहता है, पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन है। अगर वो पाकिस्तान, अमेरिका जैसे मुल्क और दूसरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अब कई लोग इसके ऊपर भी तनकीद करते हैं, हम उन उनकी अकल के ऊपर सलाम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अभी जितने काम पंजाब के अंदर हो रहे हैं, जितने पाकिस्तान में काम हुए हैं, ओवरसीज में काम हुए, इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, भाई साहब आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करें तो पाकिस्तान को श्रीलंका से अटैच किया जा रहा था। अभी बात करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान एक दुनिया के, देखें भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा के भी गुजारा करेंगे लेकिन आटे में बनाएंगे, तो वो बनाया। अभी मुश्किल वक्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुश्किल वक्त से गुजर के अब आ गए, अब थोड़ा मुश्किल वक्त है, अब आगे की तरफ अच्छा वक्त आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा। तो अभी
1: इंशाल्लाह
0: जितनी भी कंडीशन आपके सामने है, जो मेरी मुखालफ पार्टी का बंदा भी बोलते हैं, वो भी देखेगा कि हाँ भाई हमारी इज्जत बनी है, हमारे मुल्क की इज्जत बनी है, इसमें ना मियां मंशे की इज्जत है, ना फैसल की है, ना राजा कपूर साहब की, जब बोलेंगे पाकिस्तान की इज्जत बनी है, तो
1: पाकिस्तान
0: हम
1: का।
0: पाकिस्तानी है। तो ये चीजें इख्तलाफात छोटे कुंद जेन होते हैं, इन जेनों से इख्तलाफात निकल जाए, तो ये जो लोग इख्तलाफ रखते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी पहले समझे, और पाकिस्तान के ऊपर जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। हमारे तमाम लीडरान राय साहब आए हैं जितने भी, उन्होंने कभी भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात, पाकिस्तान के क्या कहते हैं कि जी अपोजिट जा कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। हर बंदा अपनी कुर्सी का एहतराम करता है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से होता है किसी से नहीं होता, कोई सियासत को समझता को नहीं समझता। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी जब मौजूदा हालात में हम गुजर के आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया को इसी इसी टंडोर के अंदर, हमने इंडिया को भी नाकों चने चबा दिए, हमने अपना नाम भी कमाया, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी, और दुनिया में भी नाम कमाया। ईरान जैसी जंग जो थर्ड थर्ड बार शुरू होने वाली थी, इसका अगर पाकिस्तान इसमें ना एंटर होता, तो इसका हाल पूरी दुनिया इसका जो जो है ना वो सिस्टम देखती, क्या क्या खराब होता था।
1: क्या
0: डेनमार्क
1: हो
0: छोटा सा
1: जाता।
0: मुल्क है, डेनमार्क छोटा सा मुल्क है, यहाँ पर 6 मिलियन के पास लोग रहते हैं, इनके इनका जंग का कुछ लेना देना भी नहीं है, इतनी दूर बैठे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर महंगाई के साथ आपने देख लिए, हमने देख लिए। तो अगर वो पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर ना करता तो क्या हालात होते, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। तो जो ठीक है, हमारी सियासी मुखालफतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए तो दिल खोल के दाद देनी चाहिए। हमारे वजीर आजम साहब का बड़ी दिलेराना फैसला था, उन्होंने इंडिया को भी नाको चने चबा दिए, और अभी देखें उनका उनका जो क्या कहते हैं जी, एक उनका बहुत मौजाना फैसला था आर्मी चीफ साहब का, और वो फील्ड मार्शल साहब का, और यहाँ शबाशी साहब का, वजीर आजम साहब का, उन्होंने उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन करने वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हमें खामखा इंडिया की जनसियों ने बदनाम किया हुआ था, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो अमन हमने अमेरिका से लेकर एशिया तक और यूरोप तक हमने बता दिया कि हम अमन के ख्वाह हैं। तो वो देखें हमारी, आप भी इस बात पर इतफाक करेंगे कि जितना बड़ा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं कि ये मुल्क है जिसको हम गलत देख रहे थे, गलत आईना इंडिया दिखा रहा था। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इंडिया के साथ साथ कुछ ऐसे जाहल थे लोग जो भी पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका चेहरा भी अजां कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं इस बात के ऊपर फैसल को टाइम देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान दुनिया के ऊपर एक अमन का नाम है, पाकिस्तान दुनिया के ऊपर एक खैर ख्वाह का नाम है, और उन्होंने सुलह करवाने वालों का नाम है, और इसका चेहरा कोई शक नहीं, कोई शक नहीं मेरी जो है ना वो क्यादत के ऊपर, और जो अभी हमें एक हीरा मिला हुआ है आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, یہ اللہ

0: ताला ने एक तोहफा दिया हुआ है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को जिंदगी में इजाफा करे, और इसके लिए
1: आमीन
0: इनकी
1: आमीन
0: वजह से अभी हमारे मुल्क के जो हालात है, हमारे मुल्क के जो दूसरे मुल्कों की नजरें हैं वो इतनी क्या कहते हैं कि काम क्या कहते हैं खुशी से देख रही हैं कि पाकिस्तान से हमारा हमारा सिस्टम शुरू हो जाए, पाकिस्तान से तजारत शुरू हो जाए, मायदे शुरू हो जाए। अभी सऊदीया ने मायदा कर लिया, इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे मायदे भी आपको नजर आएंगे पाकिस्तान के हाथ के अंदर। तो ये मेरा आपका किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। इसके ऊपर होश के नाखन लेने चाहिए, तनकीद करने वालों को तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जो बनती है खाम खाम है वो अपने आप को चार क्या कहते हैं जो चार चावल पकाने के चक्कर में वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ना किया करें। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अभी हम हमारी मुस्लिम लीग नून है, हम पीटीआई के भी दो तीन ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून का भी दो तीन ग्रुप है, लेकिन ठीक है होना चाहिए, हमें इस पर एतराज नहीं है,
1: माशाल्लाह आप
0: लेकिन
1: सब
0: हम
1: खुद कफील हैं।
0: हाँ हम क्या राणा साहब ऐसा हम क्या दिखा क्या रहे हैं, हम चार बंदे वहां पर बैठ जाते हैं। फॉर मैं अपनी बातें करूंगा, पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मेरे भाई है वो भी, हम अपनी मुस्लिम लीग की बात करते हैं, चार चार बंदे वहां बैठ जाते हैं जो कि 6 7 10 20 साल से बैठे हुए हैं, पार्टी को डिक्टेट किया हुआ है, पार्टी को उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत आई, एक सदर बना, सदर के बाद हमने दो तीन प्रोग्राम बड़े किए, सब कम्युनिटी को बुलाया, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी कम्युनिटी के बंदे को बुलाना नहीं है, कम्युनिटी को नहीं बुलाना जी, ये कम्युनिटी के प्रोग्राम है, ये वाम के प्रोग्राम है,
1: नहीं
0: पाकिस्तान के
1: मनशा,
0: प्रोग्राम
1: फिर
0: है,
1: आप
0: कम्युनिटी
1: जो है ना
0: बुलाना।
1: देख रहे हैं ट्रैक से हट रहे हैं ना। जब आपकी पार्टी है, फैसल ने कहा कि हमारी एक ही पार्टी है, तो फिर पार्टी तो पार्टी होती है।
0: नहीं, ऐसा पार्टी एक है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने ग्रुप की बात की है, देखिए पार्टी का पार्टी एक ही है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे यहाँ पर आपको पता है 3 ग्रुप तो पीटीआई के बने हैं, 2 ग्रुप मुस्लिम लीग के बने हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं, मैं मेरी आदत है ऐसा, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, हमारे 2 ग्रुप हैं ये हकीकत है, और 2 ग्रुप बनाने वाले बंदे भी कुछ ही हैं, उनको छालने वाले बंदे भी यहाँ पर ही हैं, उनको ज्यादा छाल रहे हैं, उनके हालांकि वो शायद क्या कहते हैं ना जी वो शायद वो आ जाते, एक ग्रुप बन जाता, लेकिन कुछ लोगों ने वो ग्रुप बनने नहीं दिया, एक उनको अभी नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ यहाँ पर रहने वाले हमारे मुस्लिम लीग का। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अपनी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी आप बोलते हैं जी हमारे पास ज्यादा बंदे, ज्यादा बंदों से क्या फर्क पड़ता है, जब आप एक आपने कमरे में बैठ के बात करनी है, आप किसी पार्टी में किसी जगह पे किसी जलसे में किसी कम्युनिटी के पास 150 लोगों के अंदर बात ही नहीं कर पाते, तो मुझे ये बहुत ज्यादा होती है, मैं टेंशन लेता
1: चलें
0: हूँ,
1: इस
0: सोचता हूँ
1: पर
0: कि
1: फिर
0: नहीं यार।
1: दोबारा बात करेंगे, ये बात होती रही। ज़ाहिर हर आदमी का अपना नज़रिया होता है, हर आदमी अपनी राय
0: जी जी
1: देता है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: फैसल आप आखिरी क्या रिमार्क्स देंगे, ये यहाँ पार्टियाँ होनी चाहिए या नहीं?
2: ऐसा भी यहाँ पार्टियां ठीक है। वो आपको बताया है कि एक कम्युनिटी को मुतरक करने के लिए यहाँ पार्टियों को होना भी जरूरी है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पार्टियां हैं, लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इंडिया के अंदर इंडियन है ना, वो उनका अपनी हर किसी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जब उनका एक वजीर आजम बन जाता है वो अपने वजीर आजम का एहतराम करते हैं, वो कहते हैं कि ये इंडिया का नेता है,
1: आपका मतलब ये
2: उसका
1: हुआ
2: करता
1: कि
2: है,
1: ओवरसीज
2: वो
1: में ये
2: आता
1: जो
2: है।
1: सियासी पार्टियां नहीं होनी
2: ये
1: चाहिए।
2: हमारे अलमिया फिक्रिया के जब हमारा वजीर आजम है वो कहते हैं कि बस जी ये नून का वजीर आजम है, ये पीटीआई का वजीर आजम है, ये काफ का वजीर आजम है। तो ये मैं चाहता हूं कि इस तरह की ये ना हो, तो पाकिस्तान को ये है कि जब कोई भी पार्टी इक्तदार में हो, वजीर आजम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, तो वो जब डेनमार्क के अंदर आए, यूरोप के अंदर आए, तो उसको सारे वेलकम करें, तो अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी मीटिंग अपने अपने बैठ के जो है वो अपना अपना कर लें, लेकिन जब वजीर आजम आए तो इंडिया की तरफ करें।
1: फैसल
2: मैं
1: एक बात,
2: खुद
1: फैसल
2: एक
1: एक बात,
2: हमारे पास
1: फैसल एक
2: इंडियन है।
1: फैसल एक बात, डेनमार्क की सियासत करनी है या पाकिस्तानी सियासी जमातों की?
2: करनी तो डेनमार्क की चाहिए
1: चलें
2: और
1: फिर
2: हमारे
1: मनशा आप
2: कुछ
1: बताएं कि
2: भाई कर रहे
1: डेनमार्क की
2: हैं,
1: सियासत करनी है या
2: लेकिन
1: पाकिस्तानी
2: मुश्किल
1: सियासी
2: काम है
1: जमातों की?
2: डेनमार्क के अंदर सियासत करना, इतना टाइम देना,
0: ऐसा
2: तो इसलिए
0: बात
2: वो चंद बंदे
0: आपने
2: करते
0: ना
2: हैं।
0: ये एक फिक्रे के अंदर आपने बात की है कि डेनमार्क की सियासत करनी है या पाकिस्तान की सियासत करनी है, ये एक फिक्रे के अंदर बहुत बड़ा एक जवाब है, वो ये है कि राय साहब को हमें जो करना चाहिए हम वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम 90% जोर देते हैं, हम डेनमार्क की सियासत के ऊपर 10% का बात करते हैं और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर 90% बात करते हैं, हमें को उल्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
2: बिल्कुल
0: हमारे रगों में वो बात जा चुकी है। जैसे हम बात करते हैं, आप घर में बैठे हो, मजलिस में बैठे हो, महफल में बैठे हो, दोस्तों में बैठे हो, तो पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, यहाँ की सियासत की बात हम करते ही नहीं है, ये हमारा अलमिया है। और मैं राय साहब यहाँ पर एक बात वाजा करता चलूँ, देखिये सियासी जमातें समाजी जमातों में ग्रुप बनते रहते हैं, वो काबिल एहतराम है, इसमें कोई वो शक नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती कि एक बंदे को पता होता है कि यार जो अभी जो हमारी कामयाबी एक एक एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो उस एक प्लेटफॉर्म को دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے ایسی فضول باتیں کرتے رہنا جی ہمارے پاس زیادہ بندے یا تو یہ بچوں والی بات ہوتی ہے.
1: اس پہ بعد میں بات کریں گے. آپ نے کہا کہ ہاں اور نہ میں فیصل نے کہا کہ یہاں کی سیاست کرنی چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں یہاں کی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
0: میں تو آپ کو بتا دیا کہ ہم بالکل
2: 90%
0: یہاں پر کرنی چاہیے, یہاں کی سیاست کرنی چاہیے, اور 10% ہمیں اپنے پاکستان کی سیاست سے بھی وابستہ ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر یہاں کے سیاست کے اوپر اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ٹائم دے, جیسے میری عادت ہے میں کہتا بھی رہتا ہوں, آپ کو پتا ہے میرا, میں بولتا ہوں کہ یہاں کے ساتھ کرنی چاہیے, جو یہاں پر ہم نے رہنا ہے, ہمارے بچوں نے رہنا ہے, ہمارے لیے قوانین بن رہے ہیں, ہمارے سسٹم بن رہے ہیں. ابھی 3 سال ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, آنے والے وقت میں ابھی سے ہم کوشش کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی کچھ پتہ چلے گا. تو یہاں کی سیاست کرنی چاہیے,
1: چلیں یہاں کی سیاست کرنی چاہیے. فیصل آپ کا بہت شکریہ, منشا آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم شیئر کیا, ان شاء اللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
0: جی رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا
2: بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا.
0: یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ بات کافی مکس ہو گئی, اس میں کچھ ہماری پارٹی کی باتیں ہوگی, کچھ سیاست کی بات ہوگی, کچھ پاکستان کی سیاست کی بات ہوگی, لیکن پھر بھی ہم ہر بات کو پوزیٹو لیتے ہیں. پوزیٹو لیجئے گا بات کو, سننے والوں کو پوزیٹو لیجئے گا. اگر کوئی ایک ٹاپک پہ بات کریں تو ہم میں حاضر ہوں, کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں رائے صاحب آپ کے ساتھ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اچھے ٹاپک سے بات کریں گے اور اچھی طرح سے کیا کہتے ہیں جو سٹیٹسٹکس کے بات کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کسی کو بری بات لگے تو آپ معذرت خواہوں, لیکن کسی بھی وقت آپ جب بھی کال کریں گے میں حاضر ہوں.
2: ایک بات رائے صاحب کرنی تھی میں نے.
1: جی فیصل کر لیں,
2: آپ کے پاس ہو تو
1: کر لے کر لے.
2: وہ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں یہ چل رہی ہیں میڈیا میں بھی اور ڈنمارک کے اندر کے مسلم لیگ کے صدر صاحب وہ نہیں بول رہے میڈیا کے اوپر یا کسی جگہ, وہ ابھی میں ان کا ایک جو ہے انفارمیشن سیکرٹری ہونے کے ناطے میں نے ان سے ساری بات کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی کھل کے آ رہا ہے, تو اگر میں نے کوئی ایز اے صدر ایسی بات کر دی تو یہ نہ ہو کہ وہ اختلاف ہمارا زیادہ ہو جائے. ہمارا اتنا اختلاف نہیں ہے, ہم آج بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے صرف باتوں سے جواب ایک دوسرے کو دینا ہے تو ہم سامنے تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن میں میڈیا پہ اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا.
1: تو کوئی بات نہیں سنی آپ کی, بات ہو رہی ہے, آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہمارے, ہمیں تو ہمارے نالج
2: میں نہیں بات ہو رہی ہے کہ صدر صاحب نہیں بول رہے.
1: صدر صاحب کو بولنا چاہیے, پارٹی کے صدر ہیں بولنا چاہیے.
2: صدر صاحب انشاءاللہ ان قریب صدر صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ آئے گا, لیکن صدر صاحب کی مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ پورا رابطے میں ہے, اس کے بعد ان کا بریسٹر صاحب سے پورا رابطہ ہے, ڈنمارک کے اندر اپنی پارٹی کی ماہانہ میٹنگ میں وہ بہت متحرک ہیں.
1: فیصل آپ کا پیغام آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سب ناظرین یہ تھے فیصل اور ساتھ میں ان کے ساتھی تھے میاں منشا. یہ نوجوان ہیں, یہ بات کھل کے کرتے ہیں, یہ یہاں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں بہت ساری مجبوریاں وہ بھی آڑے آ جاتی ہیں. چلو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: इसका कोई वो उन्होंने वो चांद जो दो ऊपर जो है वो डायनेशन जो ऊपर सबसे बड़े हैं उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, क्यों प्राउन चक्र की बात कर रहा हूँ। तो इससे कोई उसमें क्योंकि हमने करना ये पता क्या है, ये है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम नहीं कर सकते। हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हम किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। हमने वो मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें हमारा जाती मफाद हो। हमने ये नहीं करना, ये नहीं देखना कि फ्यूचर क्या है हमारे लिए। अगर आपने इसी ब्रांच में रहना है तो सर, अगर इसी ब्रांच में रहना है तो फिर आपने ये चीजें करनी होती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जहां पर चलो जी हैरा मेरी है कर लेंगे। यहाँ पर हर चीज सिस्टम के मुताबिक पेपरों के पेपर वर्क के साथ चलती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर चीज को वो कानून और उसके मुताबिक वो कहते हैं चला जाता है, और आपकी दलील के साथ चला जाता है। ये नहीं होता कि आप उठो उधर चल पड़े उधर उधर चल पड़े। तो ये हुआ है फ्लेयर। मेरा ये कहने का मकसद पता क्या है, मेरा ये कहने मेन मकसद मेरा ये है फ्लेयर छल, यानी कि अक्सरियत होने के बाद भी हम पीछे हैं इधर भी, यानी कि अक्सरियत आपकी है कंट्रोल, वो कर रहे हैं आपको। मैं ये बात कर रहा
1: लेकिन
0: हूं
1: शायद जी मैंने एक चीज़ देखी है, इस ब्रांच में हमारे तो खैर बहुत सारे लिसनर हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साला साल से काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, शौर भी रखते हैं डेनमार्क की सियासत का, अपने मुल्क की सियासत का। तो लेकिन जब इन्हें पता कि ये हमारा रोज़गार है, हम इस पे काम करते हैं, तो ये इतने मज़बूत होने के बावजूद भी ये क्या ये अपनी फोनिंग अलहदा नहीं बना सकते, ये अभी बना ली है?
0: अपनी फीनिंग ये पिछले 40 साल से बना रहे हैं सर। अपनी फीनिंग क्या कहते हैं बनाने के लिए कोई कोई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये गोरे लोग बना लेते थे ये, कोई ये इसके लिए आपको मुतखिद होना होगा पहले। ये तो मुतखिद ही नहीं है, अपनी फीनिंग कैसे बनाएंगे ये? ये तो एक रात बैठ के किसी जगह में किसी कोने में बैठ के कॉर्नर मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये सारे खली बली अपने अपने वो कहते हैं दिहाड़ियां, पता ही कोई नहीं है। बिल्कुल बनती है इनकी इनकी फ्रेनिंग, इनका सारा कुछ बनता है, वो एक रात के लिए होता है, सुबह खत्म, पता ही कोई नहीं कोई किधर गया किधर गया, ढूंढ रहे हैं आप उसको। तो
1: लेकिन
0: ये सिर्फ
1: शायद
0: दिल
1: अब
0: बहलाने के
1: क्या
0: लिए होता
1: मुस्तकबिल है इस ब्रांच का?
0: है। इस ब्रांच का मुस्तकबिल मैं एक और बता दूं, एक और एशिया से एक ग्रीन के नाम से कोई फर्म है बड़ी, और उनका जो फंड है 38 बिलियन डॉलर, उसको आप जरा दे लें 7.5 से 7 देने से कितनी 100 बिलियन डॉलर उन वो फंड, यानी कि वो एक फर्म जिनके पास पैसा है। 600 टैक्सी खड़ी है उनकी तैयार मुंचेंग के लिए ग्रीन, यानी कि वो वियतनाम पीछे से वो कहते हैं उनका जो उनका उनका मालिक है वो वियतनाम से है। 600 टैक्सी
1: तो
0: आपकी
1: लेकिन
0: और आ
1: टैक्स
0: रही
1: का
0: है।
1: निज़ाम कैसे चलेगा फिर?
0: मैं आगे बता दूं आपको टैक्स का निजाम, ये भी मुझे पूरी बात का लेने दें। 600 टैक्सी मुंचिंग हो रही है ग्रीन के नाम से, और वो किसी वॉनमैन के लिए नहीं है, वो खुद ही वॉनमैन होंगे और वो खुद ही यहाँ पर एनसेट करेंगे शफे, और वो फैसले देंगे। ये मैंने अभी तक पढ़ा है, और ये डेनमार्क में अब स्कैंडिनेवियन में बल्कि पूरी आ रही है, वो ऑलरेडी काफी यूरोप के एशिया में तो आई है काफी मुल्कों में। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना पैसा जाया करेंगे? कहते नहीं, हम यहां पर पहले 1 साल तो पैसा फेंके हमने 2-3 मिलियार्ड। ये कैसे फेंके? ऐसे कि हमने कस्टमर जो है लेके आने हैं, कस्टमर कैसे लेके आने हैं वो उनको पता है, वो उन्होंने नहीं बताया। ये सही बात है, तैयारी तो उनकी होगी ना कोई ना कोई। और वो 600 है ना, 600 से 1200 करेंगे जो आज तक आपकी वॉनमनी भी यहां से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही वॉनमन होंगे, वो किसी को अपनी टैक्स ही नहीं देंगे। वो जो अदारा ना ग्रीन, वो खुद ही मालिक है टैक्सी का, वो गाड़ी जो है जो जो गाड़ी है ना इक्विपमेंट जिसे कहते हैं गाड़ी, ये उनकी होगी, उसमें सिर्फ आप एनसेट होंगे 3 ड्राइवर 8-8 घंटे, 8-8, कोई ये 30 घंटे नहीं एक ड्राइवर चला रहा है 18 घंटे, नो नो, 8 घंटे की वक्त, सुबह दोपहर शाम की और रात की 24 घंटे हो गए। उन्होंने ये पैसा फेंका, ये बात ये बिल्कुल ऐसे हो रही है, ऐसे ही ऊबर ने किया था तो ये मानते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: ऊबर ने किया था,
1: ये एक
0: उन्होंने कहा
1: नई
0: था
1: जो है वो शुगर की गोली आ रही है।
0: आ रही है, और ये अब आपका सफाया डेनिश जो थिंक टैंक है जो बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने जिस जगह फॉरनर ज्यादा आ जाएंगे ना और उनमें तफाक नहीं होगा, इतफाक नहीं तो आपकी कोई स्टैक यूनियन नहीं बनी कोई ताकतवर, जब वो बनी नहीं उनको पता लगे है और फॉरनर ज्यादा थे انہوں نے آپ سے وہ چھین لیے سر.

0: अरे की सारी ब्रांच, और ये पीछे इन्वॉल्व है आपकी, स्टेट इन्वॉल्व होती है ऐसे, वो जो आ रहे हैं बाहर से ये सारे ऊपर पीछे इन्वॉल्व है
1: लेकिन ये
0: उनको।
1: जो बड़ी कंपनी बताते हैं कि ये छह गांव फिया छाल या छह गांव फेमस छाल, ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है?
0: छाए में छाल तो एक डेनिश कंपनी थी, है ना अभी तो, इनके तो टैक्सियां 400-500 रह गई हैं, 400 या 500 में गलत, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप बड़ी कंपनी है तो अब ऊबर है, वो डैन है, डैन टैक्सी ऊबर एक है, बड़ी कंपनी तो बोल्ट है इधर आ गई, उनके पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ 4500 4400 जो गाड़ी है वो, इसमें से आप 400 से 59 टैक्सियों की निकाल दे, बाकी 4000 उनकी है इस वक्त रोड पर, तो बड़ी कंपनी कौन सी हुई।
1: चलें वो कंपनी आ गई जो अपनी 600 गाड़ियां ला रहे हैं, वो आ गए प्राइवेट ड्राइवर रखेंगे, हैंडसेट करेंगे, मालिक कोई नहीं होगा, मालिक वही होंगे, फिर क्या होगा?
0: मैं जो देख रहा हूँ फिर ये क्या होगा, अगर वो उनके पास तो पैसा है, ऊबर से भी ज्यादा पैसा है, उन्होंने अपना यहाँ पर स्कैंडिनेवियन में यही चीज नॉर्वे में करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मार्केट देखी है पहले, ये काम, ये सर जी, ये लोग, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, अमीर जो लोग होते हैं, अमीर जो कंपनी होती है, वो हर चीज पहले रिसर्च करके, हर चीज को उसको पूरा रिसर्च करके वो फिर आती है पूरा होमवर्क करके कि हमें यहाँ से क्या आएगा, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या चक्कर है इधर, फिर वो यहाँ पर अपना पड़ाव डालते हैं। तो उनको ये भी पता है कि अभी हमने दाना फेंका है, अभी हमने 6 महीने साल हमारा पैसा लगना है, उसके बाद हमने, ये भी हो सकता है कि उनका उनका उल्टा ख्याल हो, वो 6 माह 8 माह या साल पैसा लगने की बजाय शुरू में पैसा आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये तैयारी करके आते हैं कि हमने पैसा लगाना है अभी।
1: लेकिन जबकि कोपन एगर में गाड़ियों का दाखिला बंद हो रहा है, जो ये सड़कें आपने देखा तंग हो रही हैं, साइकिलों के लिए ज़्यादा जगह बना रही है, तो गाड़ियां तो फिर कम हो जाएंगी, ये 600 गाड़ियां कहाँ चलेंगी?
0: मैं, आप पॉइंट नहीं समझे, ग्रीन टैक्सी इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट के साथ उनके रबते हैं आपकी स्टेट के, उस वक्त सिर्फ बस होगी इलेक्ट्रिक और यही गाड़ी होगी ग्रीन बस, ये आज से, ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने आज से 15 साल पहले सुना था, ये कंपनी का बात नहीं मैं कह रहा, वैसे ही कि किसी डैनिश ने बताया था मेरे से बात हुई, वो कहता है कि फिम्त नोच पे चो चोशन एल्व, कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सी का कंसेप्ट खत्म ही कर दें, ये जो फलां चल रही है हम एक ही ले आए ग्रीन टैक्सी और वो इलेक्ट्रिक की, और वो उसे को चाहे स्टेट उसको करे या स्टेट अपने नाम से बना ले, या कोई बड़ी अमीर कंपनी आ जाए, चाहे डेनिश हो या कोई हो बाहर से, ये 15 साल पहले इसने बताई थी बात मुझे, इससे वैसी बात चल रही थी मेरी, आज देखें उन्होंने 15 साल पहले की ये चीजें सोची होती हैं, उन्होंने ये कर लिया है और ये होना है, जबकि वो आ गई है। और अभी भी राजा साहब, अभी भी हमारे लोग कह रहे हैं, उबर आई थी ना, उबर भी कहा था उन्होंने, अब ये साल पहले आई थी उबर, कहते इधर गालिबन 1.5 साल हो गए हैं कि ओए उबर हमारा कुछ नहीं कर सकती, वी एक से सेल, ये क्या था कैपरॉन चाक के में जो लोग काम करते
1: ये
0: हैं,
1: अक्सर हमारे थिंक टैंक शाह साहब बताते रहते थे, फिर काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शाह साहब
0: शाह
1: झूठ
0: साहब
1: बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक बात करते थे, शाह साहब क्रिटिसाइज लोग करते हैं, अब भी ग्रीन टैक्सी आ रही है ना, अब भी ये कह रहे हैं ओ कुछ नहीं हो सकता, ये है सोच हमारी, लोग तैयारियां करके बैठे हैं, पैसा बहा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर एक ब्लैक ऊबरे चला रहे हो, आप लोग यहाँ पर इनके नीचे काम कर रहे हो, हालत ही कोई नहीं है आपकी, मैं आप बीच में मैं भी हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, शाह सब अकेले क्या कर सकते हैं, बता ही सकते हैं ना, 2-4 बंदे 10 हो क्या कर सकते हैं अकेले, इसके तले सारों के मुतरद होना पड़ता है, ये है हमारी सोच, कोई बात बता रहा हो शाह साहब बताते थे ना, या आपने खुद ही बताया, मैंने भी सुना था, मैं बता रहा हूं, ये आगे से उसको टीज करते हैं, टिचकर करते हैं, ये लोग नहीं ऐसे करते, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रांच आपके पास थी, सबसे ज्यादा आप हैं, कब्जा वो कर गए हैं आपके ऊपर आके, और वो चला भी नहीं दे, उनका कोई मालिक टैक्सी नहीं चला रहे, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो आप चला रहे हो, आपको आगे जोता हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, कब्जा उनके पास है, सारा मार्केट सारी उनके पास
1: तो
0: है।
1: शायद अगर तारीख को देखा जाए तो जब अंग्रेज आया था इंडिया पाकिस्तान में तो उनके भी लोग बहुत कम थे।
0: आपने आज फिर मुझे वो बात याद दिला दी है, जब अंग्रेज आया था ये इंडो पाक में, ये सब कॉन्टिनेंट में उसने कदम रखा था, वो फौजी थोड़े थे, वो तो एक बिजनेस, वो ताजर थे, उधर आए थोड़े से लोग थे, ये उनके पास हाथ जोड़ के चले गए, इन्होंने जाके एक दूसरे की शिकायतें लगानी शुरू कर दी, गोरा देखा उन्होंने, जब चमड़ी पहली बार देखी, ये जो पूरा ये पूरा हिता था, ये इकट्ठा ही था ना, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, ये जब पूरा हिते ने देखा इन लोगों ने, इन्होंने जाके उनके आगे हाथ फैला दिए। उन्होंने फिर जाके अपने वहां पर बरतानिया में जाके बताया कि वहां ये हालत है, आप क्या कर रहे हो, आप तो उधर उधर अफ्रीका में या दूसरे मुल्कों में आपका राज है, इधर भी आ जाओ, ये तो बहुत बड़ा एक सबकॉन्टिनेंट, एक बरसगीर बहुत बड़ा है। वो अंग्रेज क्लेवर ताकतवर तरीन एम्पायर था, उन्होंने जनाब शिप भरा, शिप लिया, उसमें 1,000-1,200 बंदा था, आए उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कब्जा डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने फिर जाके इनके दिमाग स्कैन किए। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, ऐसे हुआ था इनके जब दिमाग स्कैन किया, उन्होंने कहा ये तो सारे के सारे जो हैं तकरीबन बल्कि सारे को ये तो सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के टांगे खींचने वाले हैं, ये तो अपने मुल्क ये जी जी बरसगीर है इसकी सके ही नहीं है, ये तो सब मैं गद्दार लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ा फिर सख्त हो जाता है।
1: चले
0: ये
1: मीर जाफर एक दूसरे के है,
0: हाँ मीर जाफर कहते हैं, ये तो मीर जाफर है एक दूसरे के लिए सारे, ये तो हमें बता रहे हैं एक दूसरे की शिकायतें, एक लगा के जाता है एक वो, और हम क्या है, उन्होंने कहा हम तो, वो अंग्रेज क्या था, एक आम इनकी तरह इंसान था, इन्होंने उसको अपना खुदा मान लिया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही है, फिर उन्होंने जब इनकी कमजोरियां सारी उनके पास आ गई, उन्होंने फिर और इजी उन्होंने कहा ये लोग है ये तो अफ्रीका से भी इजी है, पहले तो अफ्रीका इजी टारगेट था, अफ्रीका के लोग देखें क्या हाल है, कब्जा किया हुआ अभी भी, ये कहा ये तो अफ्रीका से भी इजी है ये लोग, ये तो मुनाफिक भी हैं, मीर जाफर भी हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। फिर जनाब उन्होंने इनके डीएनए भी खराब करने शुरू कर दिए, खराक इनको ना सही, जब गुलाम बनाया ना, जब गुलाम बनाते हैं ना अगले, फिर उन्होंने 200 साल
1: बातें तो आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ डेनमार्क में, डेनमार्क तो ये एक वेलफेयर स्टेट है और ये खासकर लेबर पे चलता है, तो लेबर में बहुत सारे लोग होते हैं, टैक्स तो उनकी तरफ से जाता है, तो ये मुल्क तो चलता ही टैक्स से है।
0: आपको पता है कि डेनमार्क के पास जब ये आया था कोरोना, तो उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी फर्मों को, छोटी फर्मों को, बहुत से उसमें से काफी फर्में थी जिन्होंने फाके लिए थे, कितने कितने कई बड़ी फर्मों ने कितने कितने मिलियंस के, और डेनमार्क ने उस वक्त 800 मिलियन से लेके 800 बिलियन, मिलियन नहीं 800 बिलियन ये फाके दिए थे स्टेट ने, तकरीबन सारे के सारे फाके वापस ले लिए उन्होंने तकरीबन। उनमें से बहुत से लोग थे, बहुत सी फर्में थी जिन्होंने झूठ बता के लिए थे अपने फाके, और ये जो अभी आप बता रहे हैं टैक्स का, इनका सबके ऊपर नजर होती है, ये सबको खाने देते हैं इसको उन से करो, लेकिन ये बड़े आराम से आते हैं और आराम से आके पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है ये। तो वो उन्होंने अपने 800 नहीं तो कम से कम 600 बिलियन डॉलर वापस, तकरीबन सॉरी डॉलर नहीं करोन वापस ले लिए या आ चुके हैं उनके अकाउंट।
1: लेकिन ये जो आप साथ साथ कह रहे हैं ये कंपनियां सारी बाहर से आ रही हैं,
0: बाहर से ऐसे नहीं आती, आपकी स्टेट इसके अंदर एग्री होती है, बाहर से आना अच्छा शुगन है, आपका सरमाया बाहर से आता है, ये सरमाया जब बाहर से आ रहा है, गाड़ी आई है ना आपकी 600, 800, 1200 वो सारी खरीदी गई है इधर से, टैक्स दिया है उसका, मम्स दिए गए हैं यहाँ के मुताबिक, जो जो उनके प्रोटोकॉल हैं, मुझे नहीं पता जो बाहर से कोई फर्म आती है उनके साथ इनके क्या रिलेशन है, उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनका क्या इनके साथ आउचेल है या अग्रीमेंट है, ये तो वो जानते हैं, ये या ये जानते हैं, ये तो आप मेरे पढ़ भी सकते हैं जाके बिजनेस अफेयर जो उनके उसमें आप मरहल सारी चीजें खुली रखी हुई हैं तो उनके साथ, लेकिन ये बाहर से सरमाया आता है और बाहर से सरमाए को ये उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। जब तक तो आपके मुल्क में बाहर से सरमाया नहीं आएगा आपका मुल्क नहीं चल सकता। आप ये राजा साहब इन्होंने अपना मुल्क टिक टाक और कहते फोटो इश्तेहारों में थोड़ा चलाना है, कभी देखा है डेनमार्क फोटो इश्तेहारों टिक टाक में चल रहा है,
1: टैक्स हर हालत में लेना ही लेना है,
0: टैक्स हर हालत में लेना ही लेना है, चाहे वो गरीब है चाहे वो सड़क छाप है, चाहे जो ही उस वापिस मार्केट में वाया ना, चाहे उसने 1 रुपया भी कमाया हो, टैक्स छोड़ना नहीं है उन्होंने आपसे, ना मम छोड़ने हैं। तो वो बातें ये गलत हैं, ये छोड़ते नहीं है, चाहे उसको 4 साल बाद पकड़े 10 साल पकड़ लेते हैं ये।
1: तो ये हालत होती है की बात आप कर रहे हैं, इस ब्रांच की आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लेबर लोग काम करते हैं, तो उसके तो देखें बड़े बड़े जब स्टोर बनते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुलती हैं, दो साल तीन साल रहती हैं, बंद हो जाती हैं, साल रहती है। अगर आप एक बार नहीं साल बाद दूसरे स्टोर में जाएं तो वो दुकान वहाँ मौजूद नहीं होती। ये क्या होता है कि या किराया कम रखते, इसी तरह ये सहूलियात तो गवर्नमेंट नहीं देती। वो कहती है हम तो टैक्स और मम्स ले रहे हैं, लेकिन इनको सहूलियात दें, कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
0: ये चीज़ें तो, ये जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ये शोरूम्स होते हैं किसी किसी ब्रांड के शोरूम्स, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो आए हैं, चाहे यहाँ पर 10 लाख किराया है, चाहे 5 लाख करोन किराया महीने का, वो देते हैं। उसमें वो शोरूम का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर आपकी कोई सेल हो रही है, क्योंकि सेल तो उनकी ऑलरेडी नेट के जरिए है, दूसरी दुकानों जो दूसरी छोटी दुकानें हैं जो उन्होंने खोली हुई हैं, वो ज्यादातर ये फ्रेंचाइज होती हैं। तो जो शोरूम्स होते हैं वो बड़े बड़े, वो सिर्फ वो डिस्प्ले ही आप समझ लें, वो डिस्प्ले होते हैं वो दिखाने के लिए। वो बंद भी हो जाते हैं, खुलते हैं, किसी और जगह मूव हो जाते हैं। ये बताता चलो कि डेनिश गवर्नमेंट दुनिया की अमीर तरीन स्टेट में से एक स्टेट है। इनके बहुत बहुत पैसा है टैक्स का इकट्ठा किया हुआ, इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया 2000 के बाद। इनके पास इतना पैसा है कि आपकी सोच से, हालांकि इनके पास तेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, तेल के बगैर, मादनी जहायर के बगैर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है इनके पास। हाँ, बड़ी कंपनी इनकी अपनी है, नोवो नॉर्डिस्क उनके पास जो मेडिसिन बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी है जो बहुत ज्यादा जिस जो जो ना सरमाया लेके आती है, यानी कि दूसरे मुल्क मुल्क अपने दूसरे ममालिक में अपनी दवाइयां जो है ये वो बेचते हैं। और उसके पास और भी छोटी मोटी दवाइयों की कंपनी है जिससे डरमारों को बहुत फायदा होता है, लेकिन ज्यादातर इनका जो पैसा है वो टैक्स जो कलेक्ट है वो होता है, और वो लोग इनकी टैक्स देते हैं वो खुशी से। और इनकी जो लोग हैं वो जो अमीर हुए हैं वो 2000 के बाद, आम लोग जो अमीर हुआ है जिसके पास पैसा आया, आपके सामने है वो सब, अब तीन तीन गाड़ियां, किसी के पास चार चार गाड़ियां, दो दो गाड़ियां आम हो गई हैं। ये मैं डेनिश लोगों की बात कर रहा हूँ। और 8-10-15 हजार तनखा नहीं है, 60-70 हजार ऊ बचेल, 50-50 हजार ऊ बचेलता है, यानी के टैक्स कार्ड के पैसे दार हो रहे हैं। इतना इतनी इन्होंने तरक्की की है, और तलीम में भी ये लोग बहुत आगे गए हैं। इनके बच्चे, आप 90s वाला 80s वाला डेनमार्क जो है वो बिल्कुल उसको लाके तस्वर में, तो आज का डेनमार्क देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने 25-26 सालों में तरक्की की है, कैसे की है। और वो यही है, आपके 25-26 सालों में बाहर से कंपनियां बड़ी आई हैं, और होटल आपके कोपनहेगन में 100-150 होटल तो मेरे सामने बना है, बड़ा बड़ा होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप भी जानते हैं इसको। कोई 90s 80s में कोई खास होटल नहीं थे इधर, मांसवाड़े वेस्टपो ईस्ट तक, ये कोपनहेगन की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत इधर उधर, ये होटल सारे बन गए क्योंकि उनको जरूरत थी। होटल इसलिए बनते हैं जब आपके मुल्क में सरमाया आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है, और टूरिस्ट आ रहा है, और लोग आ रहे हैं आपका मुल्क देखने के लिए। बिजनेसमैन आता है उसको होटल चाहिए होता है, टॉप के होटल बनाए हैं उन्होंने, और बहुत ज्यादा बनाई है, और उसके बाद आपके मुल्क में टूरिस्ट आता है बहुत ज्यादा। हालांकि छोटा सा कोपनहेगन है, बस कल मैं भी सोचता हूँ क्योंकि मैं इधर ही रहा हूँ जंपल, यार इधर क्या है देखने के लिए, दो तीन जगह हैं, उधर चले जाओ, हाफ वो ट्वाली चले जाओ, या क्या कहते हैं उसको, वो न्यू हॉन चले जाओ, और मुझे तो और कुछ नहीं लगता इधर। तो लोग आते हैं, इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, मशहूरी की हुई है, ये सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, ये लोग, ये इन लोगों ने किया है, हम नहीं है, बात माननी चाहिए उसको। जब ये, हाँ मैं ये भी एक ऐड कर दूं, 100 साल पहले ये लोग भी बहुत परले दर्जे के थे, इसमें करप्शन थी, ये लोग जमहूरियत पसंद नहीं थे 100-150 साल, लेकिन इन्होंने फिर दूसरी कौमों से सीखा है, ये सीखते हैं। ये हाल ही क्या कहते हैं, टिकटॉक मशहूरियां, फजूल किस्म के इश्तेहार, बड़े बड़े मेरी फोटो लग गई बार लगी हुई है चराहों में, देखा कभी आपने डरमारे में किसी की चराहों में, इलेक्शन के बाद देखा किसी ने किसी मेयर की चराहों में फोटो लगी हुई है कि इन्हें काम कराया है, और लाना था काम तू कराया, तेरा पैसा है, मैं काम कराया, ये तो कवाम का पैसे थे सहन किया ही, कराया तू काम, वोट ले ही ना तो काम करा, हूं मैं काम कराया, पैसा मेरा है, मेरे मुल्क का पैसा है, हजाने का कट के, तो तू कहना मैं काम कराया, इस करके वोट ले आया तू, तो फिर तू काम कराना है, तुसाने किया ये है यहाँ की ये सियासत
1: यहाँ के लोग। आखिर में हमारा टाइम अभी इजाजत नहीं दे रहा, 5-6 मिनट है, आप बताएं इसका हल क्या है आने वाले दिनों में अपने लोगों को। आप देखें आपके स्वीडन में इलेक्शन भी होंगे, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया, आप दोनों मुल्कों के शहरी हैं, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया। कभी इस डेनमार्क में 40,000 की आबादी में हमारा कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, और आपका भी जो है स्वीडन में कोई पाकिस्तानी शायद पार्लियामेंट का मेंबर है या नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। आने वाले सितंबर के इलेक्शन में अगर आपका भी वही हाल हुआ यहाँ जो डेनमार्क में हुआ, तो फिर आप क्या कहेंगे?
0: बड़ी अच्छी बात की आपने, आपने डेनमार्क की, फिर मेरे वो क्योंकि मैं फिर कुछ वो आ जाता हूँ, थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ,
1: भाई वतन है आपका,
0: मैं फिर उधर चले मैं कि ये क्योंकि एक 60 साल की एक एक वो हमारी वो इन बात जो है वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, 40-45 हजार बंदा है इधर पाकिस्तानी। और वैसे तो मुझे खुद भी, मैं अपनी बात करूंगा यार, किसी को मैं क्या ब्लेम दूं, को किसी को कहूंगा तुम्हारे तो लोग तो ये जो है तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते, इतने हम बेशरम हो गए हैं। यानी कि जो चीज हुई है उसको तो बर्दाश्त कर लो ना, अब की है आप लोगों ने, यानी कि 5 के 5 बंदे हर गए यार। जब मैं इकट्ठा बैठा होता हूँ ना मैं अपना, तो मैं देखता हूँ कि यार अपने ऑफिस में बैठा, अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दफ्तर बैठा हूँ मैं, 5 के 5 बंदे हर गए यार। फिर मैं देखता हूँ कि यार इस हारने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, ये नहीं कि उस हारने के बाद सीखना होता है ना, अपने दूसरों से सीखना कि मैंने क्या गलती की है। मैं अब स्वीडन की करूंगा बात, 26-13 सितंबर को इलेक्शन है, गालिबन यहाँ भी कोई पक्ष, बदकिस्मती से यहाँ खुशकिस्मती दिन में कहूंगा, बदकिस्मती से कोई पाकिस्तानी यहाँ पर कहीं कहीं भी नहीं है, किसी भी खाते में नहीं है। तो उसका उसका जो है करूंगा बात, तो लंबी तकरीर हो जाएगी, क्या वजह है ये सबको पता है, पता सबको है, लेकिन उसका हल जो है, हल ऐसे नहीं होना बातों से, हल आपने मुतहद होकर करना है। आपने डनमार्क की मिसाल ले लें, जीती ना लड़की एक अफगान आजाद है, 86-84-85 में आए उसके अबाउजदाद, इधर कितने अफगानी है डनमार्क में, 10,000 होंगे, 5,000 मैं गलत नहीं हूं, जीती है ना, आई है ना, उसके बाद वो मिनिस्टर है आज।
1: लेकिन शायद एक पहली बार देखा है, जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है को वजीर बनने के बाद किसी ने बात की वो अलग चीज है, लेकिन गैर मुल्कियों ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, खुशी महसूस की है।
0: मैंने खुद खुशी महसूस की, मैं ये तो बता रहा हूँ, एक अफगानी गैर मुल्की जीत गई है, 10-5 हजार उनकी कम्युनिटी है, आप लोगों की तो 45,000 है। बातें कम करते हैं ये जो लोग है ना गोरे, ये बातें कम करते हैं, खौड़ मुख्तसिर बात करके जो सियासतदान है खौड़ बात करता है और मुख्तसिर करता है, जैसे आनस फो हाशमो जिंदा, मैं आनस फो हाशमो को पर्सनली 6 दफा मिला हूं, वो बात नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुराता था, उसे जो भी बात मैं करता था वो मुस्कुराता था, कैसे देता था, कोई लंबी लंबी उसको पता था लंबी लंबी बात मैंने करनी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन सेशन होता है वो एक और चीज है, लेकिन जब वो बाहर होता था, आपने मीडिया में उसको देखा हुआ है, बात कम करता था, मैं उससे मुतासर हुआ था, आनस हो मेरा वो, मैं उस पार्टी से नहीं हूँ लेकिन उससे मुतासर हुआ था मैं। तो लिहाजा आप जो, हम जो लोग हैं ना, बातें कम करें, यानी कि मैं वो मिसाल दूंगा तो फिर आप कहेंगे ये शाह साहब क्या कह रहे हैं, यानी कि करना कुछ नहीं, करना
1: भी होना नहीं, फिर इल्जाम ना आ जाए कि राजा साहब शायद से झूठ मरवाते हैं जिस तरह शाह साहब के बारे में करते थे।
0: ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ, राजा साहब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बातें खौड़ करें सारे और करें कुछ, लेकिन अब तो आपको 4 साल बाद, 4 साल से पहले तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते किसी भी, अब आप उस 4 साल में देखें कि आपने क्या कोताहियां की हैं, वो उसको उसका एनालाइज करें अपने आप से सारे, और फिर मैंने तो इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, जिसने भी खड़ा होना है उसे करें कि क्या गलतियां हुई हैं, उनसे क्या गलतियां हुई हैं, आने वाले 4 सालों के बाद क्या क्या क्या गलतियां हुई थी जो मैंने अब नहीं करनी, छोड़ दें। मैं फिर कहूंगा जब आप डेनिश सियासत कर रहे होते हैं तो छोड़ दें उसके अंदर देसी टच देना, आप अपने यहां पर लोगों को जाके बताएं, पाकिस्तानियों को सबको एक एक एक एक वो एक जो होता है एक एक समझ के एक ही झंडा, वो है स्वीडन अपना डेनिश, जब आप डेनिश ऐसे करें डेनिश झंडा, जब आप फॉरनर से मिले गए हैं पाकिस्तानियों से, फिर 7 पाकिस्तानी डंडा भी आ सकते हैं, क्योंकि आप इन वांता जो है उनको बताने जा रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी पार्टियों के वहां पर झंडे रखेंगे साथ पाकिस्तान के, फिर आप इलेक्शन हार जाएंगे, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। ये है। इस ही मैं स्वीडन की भी बात करूंगा, अगर स्वीडन में भी यही गलती की उधर भी कोई नहीं जीतेगा, चाहे वो स्टॉकहोल्म हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को फिर भी कहूंगा, स्वीडन में अगर लोग कुछ सुन रहे हैं, जब आप किसी से वादा करें वोट का तो आप उसको वोट डालें, जब आप वादा ना करें, ये भी होता है जैसे डैनिश कहते हैं, मैं बोलता हूँ डैनिश क्या कहते हैं, बिफोर से ही, वो तो बताते ही नहीं ना मैंने किसी को वोट देना है, वो जाते हैं हर जगह तकरीबन बहुत से डैनिश, सुनते हैं सबको सुनते हैं, जब उससे कोई पूछते ना कि विम्स को तुझ टेम बिफोर से यदिक, या ये कहते हैं यदिक मुझे नहीं पता अभी, आप ये भी कह सकते हो। आप ये तो नहीं कह सकते सामने एक बंदा आया तो उसको आपने कहा जी मैं तुम्हें वोट पावांगा, दूसरा आया बेचारा कंपेन कर रहा उसको भी आपने यही कह दिया, यार फिर ये तो गलत बात है ना। आप दोनों को इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, ये भी कह सकते हो आप, फिर जिसके साथ आपने वादा कर लिया।
1: आप देखें ना हमारे पास कल्चर सेंटर है मसाजिद की शक्ल में, मसाजिद हमारे पास मौजूद है, टैक्सी ब्रांच तगड़ी अच्छी खासी मजबूत है, इसी तरह मीडिया क्लब बने हुए हैं, शायद आपके नॉलेज में होगा, मैं तो नहीं जानता, आप पता नहीं कितना जानते हैं, तो ये तरक्की याफ्ता तो हम हैं, ये कैसे कह सकते हैं हम तरक्की याफ्ता नहीं है?
0: राजा साहब तरक्की याफ्ता सिर्फ हम अपने अपनी जो आप बात कर रहे हैं ना वहां तक है, बात तक है, प्रैक्टिकली कहीं भी तरक्की याफ्ता नहीं है हम, बातों तक है, पंजाबी च कही ना गल्ला करा लो जिन्नी मर्जी। मैंने अभी आपको टैक्सी का बताया क्या हालत कर ली, हमारे हम टैक्सी हमारी पास थी पाकिस्तानियों के पास थी ये कब्जे में, अब आपसे जा रही है ये सारी ब्रांच, बल्कि चली गई है आपसे, अब आप सिर्फ स्लेव हो सारे, अब वोन मनी भी आपसे खत्म हो जानी है जो रह गई है। क्या ही अच्छा आप इस बिजनेस के साथ साथ तब भी कोई और बिजनेस भी करते, जैसे डेनमार्क में आपको काफी उन्होंने चांस दिए थे, ये देती है गवर्नमेंट चांस, ये कहने को गलत है कि जी जब आप फेयर करेंगे काम, जब आप जेन में नियत रख के काम करेंगे, जेन में बदनीता नहीं होगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये फ्रॉड करना है, जब फ्रॉड का जेन बना के कोई काम शुरू करेंगे तो फिर तो नहीं ना, फिर आपकी
1: आखिरी सवाल है, शायद आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ रहते हुए हम डेनिश सियासत करें या अपने मुल्कों की पार्टियों की सियासत करें?
0: अगर आपने इन मुल्कों में रहना ना, मैं आज चले आपने ये बात कर ही दी है, पहले आप इन मुल्कों की सियासत को समझें, इसमें हिस्सा लें, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपकी अपनी कोई इज्जत हो इधर, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपके बंदे ही पार्लियामेंट के अंदर हों, फिर आपको अच्छा भी लगता है अपने मुल्क की सियासत सियासी पार्टियों में करना। अगर उ, उ, उ, अच्छा चलें ये भी मैं बात कर लेता हूँ, अपनी पार्टियों की जो अपनी सियासत की बात की इधर की, यहाँ की जो मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की पार्टी की, उधर क्या कर लिया हमने, आपने देख ही लिया क्या हाल है उधर, उधर भी लड़ाई बजाई शैतानियां, अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, उसके अंदर भी सदर हैं, अलामती सदर जे, यानी कि पाकिस्तान दाखिल हो लितर नहीं कोई मारदा नो, ते इत्थे अलामती सदर बनया दा है, हर कोई एवं कागजा च मैं जी फलाना टमकी टमकाना मैं सदर हाँ, मैं जी मैं वो हाँ हजांची, मैं जी नायब सदर हाँ, उत्तो वा तेनू ते पाकिस्तान दाखिल होंदे आ, तेनू ते लितर नहीं कोई मारदा, ताकदा नहीं तेरे वल, ते तू इत्थे सदर है। मैं सब पार्टी की ये चीजें निकालनी है आपको, पहले यहाँ पर आप जमाए ताकि कुछ चंगा लगे तो काम कर दिया, कोई आपके पास कोई हो बताने के लिए दुनिया को कि हम इधर की पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, इधर हम अमलदारों के अंदर हैं, हम इधर हम क्या कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इधर हमारे पुलिस के अंदर हमारी जो इधर क्या कहते हैं इफ्ता खान कुलसी उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, हमारे जज हैं लोग, फिर अच्छा लगता है कि आप अपने मुल्क की भी सियासत कर रहे हैं साथ साथ, आप इसके मुतहम्मल नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता, पैड़े लगते हो सारी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं मैंने लिया, सब पार्टियों की चंगे नहीं लगते, किसी तरीके से छिलक मजाक बनते हो, यानी कि आप कोई शक्लें देखें पहले, ना बात करनी आती है, ना खड़े होने की तमीज है, ना चलने की तमीज है, ना किसी महफल में बैठने की तमीज है, ना किसी मीडिया के सामने बात करने की तमीज है आपको। मैं अहदेदारों की बात कर रहा हूं जो बने हुए हैं अलामती, मैं तो नहीं ना अहदेदार ना बनना चाहता हूं ना बनूंगा, तो मेरे ये यही पैगाम है राजा साहब कि ये छोड़ दें ये चीजें, आप पहले फोकस करें यहाँ की जो लोकल डेनिश जैसे जहां पर आप रहते हैं उधर करें, और वो भी पता कैसे, बगैर किसी हरामजिदगी के, सॉरी टू माय वर्ड्स, बगैर किसी मकारी के, बगैर किसी लुमड़ लुमड़ बन के, ये जो लुमड़ी है जेन साफ करके, बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, बेचारे यहां पर सियासत में भी आना चाहते हैं, उनको ब्रेन वॉश ना उनके करें, उनके साथ शैतानियां ना करें जाके, की है पता है मुझे, तो उनको करने दें जब वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेंगे, फिर वो यहाँ के मुताबिक चलेंगे और वो फिर आपको लेके आगे आएंगे, आपको पाकिस्तान को रोशन करेंगे, लेकिन आप नहीं रोशन करने दे रहे पाकिस्तान को, क्योंकि खुद तुसी किसी जोगे नहीं रहे, किसी काबिल नहीं है ये, देखिए इनकी वर्थ किसी की है बताएं मुझे, किसी एक की वर्थ बता दें राजा साहब, जीरो सिफर। तो यहां पर आके हम मार खा गए, जब मैं मुझसे ये कोई ऐसी बात करे ना मुझसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा जैसे डेनिश में मुझे सिखाया है, अगर मैं गलत, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये आगे से बगैरत बन के कहते हैं नहीं, जब आप गलती तस्लीम करके एक्सेप्ट करोगे आप कामयाब हो गए, यही अल्लाह ताला ने भी सिखाया है चारों किताबों में, कुरान पाक में, बाकी तीनों किताबों में, तुरैत जंजीर से जबूर से लेके ये क्या कहते हैं बाइबल में भी, इन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, सीख है, ये लोग भी मैं बताया ना जंगजू लड़ने वाले जहालत में डूबे हुए आपस में लड़ते थे ये, लेकिन वो था उसकी मिसाल नहीं देनी कि वो भी एंजन असी एंज रहना है, आपने अब इनसे ये सीखना कि ये अच्छी जो बातें हैं, बुराइयां तो हर कौम में होती हैं, उसकी सजा मिलती है, पुलिस है हर माशरे में, लेकिन आपने इनसे अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है, वो नहीं हम कर रहे, हम नेगेटिविटी में है, सारा दिन एक कौम लगी हुई है टिकटॉक में, उन्हें राजा साहब की आगे बढ़ना है, और क्या उनकी क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं, एक कौम सारा दिन सुबह से लेके 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ बंदा टिकटॉक से बैठा था, खान नो रोटी नहीं है, 70% 80% जो है मर गए हैं बिजली से पानी से हर चीज से, 3 टाइम की रोटी नहीं है पूरी, 8,000 कहते ने तनखा च
1: लेकिन
0: गुजारा करो,
1: शायद एक बड़ा
0: अठ अठ 8,000 रुपए च कहते ने गुजारा करो, यानी कि हूं खून छो हूं खून च गुजारा कर लो, ये वे तुहाडी यानी कि इस कौम की कात, यानी कि शर्म नाल यार चुल्लू भर पानी च ना जाके इन्हें हरे तो वो डुब जाओ सारे, जिन्होंने कह क्या गया 8,000
1: शायद
0: च
1: एक
0: गुजारा कर
1: बात
0: लो।
1: मैं आपको बताता चलूं, आप बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं, हमारे समाज नाज़रीन भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हर आदमी को अपना हक है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत इसी तरह होती है, आप एक दूसरे को हक दें, लेकिन आप देख रहे हैं, आप इनको बुलाएं भी, इनके इंटरव्यू भी लगाएं तो वो लाइक नहीं करते अपने इंटरव्यू को, शायद मुझे कोई फायदा होगा, आप उस कौम की
0: मैंने राजा
1: बात
0: साहब
1: करते
0: की
1: हैं।
0: राजा साहब मैंने किसी की इंडिविजुअली बात नहीं की, आप देख ले मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ सबकी, आपने सवाल पूछा था कि यहाँ पर अपने मुल्क की सियासी पार्टियों को लेके चलना चाहिए ऐसे, मैंने उसका राय दी है, जब आप यहाँ की लोकल सियासत डेनिश में कामयाब नहीं है तो आप किस मुंह से अपनी पार्टियों को चलाओगे, ये नहीं कि आपको आप
1: लेकिन
0: इसके
1: यहाँ तो
0: मखमल है
1: आपको
0: हो
1: सदर कोई नहीं
0: आप
1: कहता,
0: इसके
1: वहां तो आप
0: ना
1: सदर
0: आप
1: लिख
0: इसके
1: लेते हैं ना।
0: आप मैं ये तो कह रहा हूं लामती सदर खुद ही लेहे दे और पाकिस्तान जाओ तेनू लित्र नहीं को मारना, एक मैं लामती सदर है जी पेपर च, ओ फलान टमकाना सदर है, ओ जी ओ की कहने ने वो कहते नाइब सदर
1: चले
0: है,
1: शायद
0: वो गल नहीं यार करने
1: इस
0: वाली,
1: सलामती सदर पे बात करेंगे, अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान है तो इनशाला आपसे रब्ता रहेगा, फिर अलामती सदूर की बात करेंगे।
0: चलें ठीक है, थैंक यू जी आपका शुक्रिया।
1: समय नाज़रीन ये थे शायद नसीम, जिनकी आप बात सुन रहे थे। समय नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, राय देने का हक है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ कहने की बात करने की आज़ादी है। समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो दारा आपके आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था, आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम उस्ताद कहते होते हैं, गो के बहुत छोटे हैं हमारी उम्र से, लेकिन वो चूंकि स्कूल टीचर हैं तो इसलिए उनको उस्ताद कहा जाता है। इत्तेदाल पसंद पार्टी के वो अच्छे खासे सरगर्म रुकन हैं, हुज़्ब-ए-सुलसा के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा और आगे की भी तैयारी, आइंदा आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसकी भी तैयारियां भी से उन्होंने शुरू कर दी। उनको एडवांटेज है चूंकि वो लोगों से मिलते रहते हैं और नौजवानों से उनका जो है अट्रैक्शन रहता है, बातचीत भी उनकी चलती रहती है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदर आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन का भी। आजकल उस्तादी भी अल्लाह का शुक्र है आप गई हुई है, जरा छुट्टियों पे नई क्लासों की तैयारी हो रही है।
1: टीचर तो फिर उस्ताद ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, टीचर टीचर उस्ताद ही कहलाया जाता है उनको।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, ने ये वाकई ये इसमें कोई शक, इस दफा वैसे भी मेरी क्लास थी, ग्रेजुएट भी हुई, उसका भी मतलब हमेशा ही जब कोई नई क्लास अपनी ग्रेजुएट होती है हर साल वो बड़ा अफेक्ट करती है। तो मैं अभी काफी अपने बच्चे दोबारा आगे भेजे, अल्लाह उनको कामयाब करे,
1: आमीन। ज़ीशान, हमने देखा कि हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, चूंकि मैं ऊपर रहता हूँ, काफ़ी ऊंचा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, तो गाड़ियाँ हर वक्त आती जाती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, 3-4 दिन या 5 दिन चलता रहेगा छुट्टियों के दौरान, तो इसकी कहानी क्या है असल?
2: इसकी कहानी असल में पहले भी वही होता था, पुराने दिनों में भी जो बन जाते थे फाउल है या स्टूडेंट होते थे, मतलब शहर में घूमना, उनको जिस तरह सराहना, और वही ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है, टोपी मिलती है, वो अपने शहरों में घूमते हैं और मतलब पब्लिक देखती है, घर घर विजिट करना, ये भी बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे के घरों को जरा विजिट करते हैं। तो वैसे तो मुझे बड़ी फेवरेट ट्रेडिशन लगती है, मैं तो हर अपने स्टूडेंट को भी हर बंदे को बोलता हूँ, मैं कह यार एक दिन जिंदगी का ना अगर दोबारा जीने होता, ये स्तुतिन तक खेसल वाला दिन क्या दिन था, हर कोई आपको चेयर कर रहा होता है, मतलब आपने एक जिस तरह माइलस्टोन अचीव किया होता है, ये हम अगर थोड़ा भूल जाते हैं कि ये फाइनल माइलस्टोन नहीं है हमारे, कुछ लोग तो आजकल ऐसे मना रहे हैं कि जैसे बस अब बिल्कुल ही फारग हो गए, ये मतलब बड़ा एक माइलस्टोन होता है, मगर इसमें अब यह है कि इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद बच्चों ने आगे भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि खाली गिमनेशियम आपको कुछ और तो नहीं है फायदा देता, आपको एक चाबी है आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे सब बच्चे आगे जाके आगे भी कोर्स करें, जो उनसे मर्जी करें, तो फाइनल एजुकेशन करें अपने। तो ये
1: लेकिन है, बड़ा मजा आता है, मैंने देखा है कि टूरिस्ट आए होते हैं तो बड़े शौक से जो है वो तस्वीर बना रहे होते हैं, तो आगे से जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़े आगे से बड़े बड़े फनी फिक्रे कसते हैं।
2: वो ऐसे ही है जी, और फिर पता है आपको हर चीज करते करते जिधर भी करो थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेट हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर देखें डेनिस सोसाइटी के हवाले से, तो ये पीना इनका ज्यादा हो जाता है, उस पर भी मतलब बड़ा फोकस रखा गया हुआ है कि थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में चल रहे होते हैं और इतना अल्कोहल जो उनसा है, कुछ
1: लाजमन ये पीना जो है इसे बैन होना चाहिए, आपकी क्या राय है?
2: बैन करना जी मुश्किल है इस मुल्क में, मगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो तो हम हमेशा से बात करते हैं, मतलब दैट्स अ बिग इशू जो हमेशा चलता रहता है कि अल्कोहलिज्म मतलब जितने घरों में और जितनी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उतनी और शायद कोई स्टॉफा करते हो, मगर क्या करें, इनके कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि खत्म करने में बहुत डर रहे हैं सब,
1: कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को होश ही नहीं रहता
2: बिल्कुल। मगर ये मैं देख रहा था इस दफा, मैंने कुछ शाम वाली भी देखी है कि काफी बेहतर भी आए हुए हैं, कि कुछ चीजें बच्चे कंट्रोल करना सीख ही गए हैं, कि उन्हें भी पता है कि इतना भी खराब ना कर दो कि दिन याद ही ना रहे आपको, इतना आपका अच्छा दिन है कि उसमें आपको कुछ याद ही ना रहे, तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, अवेयर होते जा रहे हैं बच्चे इसमें। मगर ये बहरहाल आप दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि हमारे लोगों अब हम लोग एक दफा फिर बनने लगे सुर्खियां,
1: वाह मैं उस तरफ आता हूँ, ये सुर्खियाँ हम लोग बनने लगे हैं। अब देखें कि इलेक्शन तो हो गए, कम्यून्स के भी हो गए, पार्लियामेंट के भी हो गए, सब कुछ मिल गया, हुकूमत भी बन गई, जो है वो कमेटियां भी मिल गई, अब जो है वो सियासत छुट्टियों पे गई है, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है वो सर गर्म है, क्या वजह है?
2: वो बस कुएं की छिलकी से बोलते हैं और उसमें तो हमेशा ही हम लोग ही उसका बनते हैं निशाना, मगर इस दफा तो मैं ये देख रहा हूँ कि सुचिंता वॉन क्यूर्स पे भी हम लोगों को मतलब इनको काफी मटेरियल मिल गया। आपने देखा होगा वो हिजबुत तहरीर का हमारा एक जोन सा है कि कनोचित, उसने एक वीडियो बना लिया, वो लोग बड़े चला रहे हैं कि उसने जी सबको मना किया हुआ मुसलमान बच्चों वगैरह को कि जी सुचिंता क्यूर्स पे नहीं जाना, उन्होंने तो एक वो चला हुआ था। नंबर दो, अब ये आपने देखा होगा पटाखे माशाल्लाह छोड़ना शुरू कर दिए हमारे बहुत ज्यादा लोगों ने, और कुछ कुछ जगह को हद से ज्यादा ही छुटे हैं, गाड़ियां मतलब गाड़ियां आगे लगी हुई हैं, पीछे लगी हुई हैं। अब वो मैं देख रहा हूँ वो भी सुर्खी बनने लगा है कि जी कि ये फ्यूल सही ऐसे छुड़ा रहे हैं जिस तरह मीरो साफ ने, और ये गलत है, और एक दूसरे के पीछे पीछे भी छुड़ा रहे हैं। और हर चीज वही कहते हैं ना ओवर एग्जैजरेट हो ही जाती है।
1: तो इसका फायदा जो है वो डीएफ को जरूर होता है।
2: डीएफ को आजकल आपसे कल मेले पे मुलाकात हुई थी, वो थोड़ा सा जिक्र छिड़ा था ना, अब डीएफ अकेली तो नहीं रहेगी। वो पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर बात करें तो आप लोग देखे ना इन्फोस खास उलवेल जोन सा बना, ये जो डेनिस पासपोर्ट वगैरह का फैसला वगैरह करना होता है, अब देख लें नया पार्लियामेंट आया उसमें फिर भी देख लें कि ज्यादा अक्सरियत में जो पार्टियां बैठी हुई हैं जिन्होंने बंदे अपने भेजे हैं वो सारे वो हैं जो सख्ती करना चाह रहे हैं, रेडिकेल का एक, मुड़गाड़ा ने का एक, एसएफ के एक दो, इनहोसिस्टम का एक, पांच बंदे ये हैं, बाकी सारे सुशेल ते मुखसल बेंसा तेनमक्स ते मुखाड़ा ने टीएफ का वो फिर फॉर्मेट बन गया हुआ है, ये बैठे हुए हैं उधर जान तंग करने के लिए अभी भी।
1: नहीं तो पार्टियों में तो जहां कमेटियों में अक्सरियत होती है फैसला तो वही होता है
2: असल में भाई, ये इनिंग और डिस्पेंसरी वगैरह उधर ही जाते हैं। वो मैं दरअसल ये एक चीज है, मैं खुद इसके मेरे लिए भी नया था, मुझे था शायद कि पार्टीज को जगह मिलती है कि कितने अपनी साइज के मुताबिक से, मगर ये कोई मेरे ख्याल से सिलेक्ट करती हैं पार्टियां। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा इसका पता करके बताऊंगा कि इसमें कुछ पार्टियों के ज्यादा क्यों है और कुछ के थोड़े क्यों है, क्योंकि मुझे वो देख के थोड़ी सी हैरानगी हुई है कि
1: आपकी पार्टी है इक्तदार में, आपके फोरमैन है उनको काफी बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, तो वो काफी जो है वो ये जो कैटेगरी फाइव वाला मामला है इसमें भी काफी पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि गैर मुल्की से मुराद हम पाकिस्तानी खुद किस तरह उनसे रब्ता करते हैं।
2: बिल्कुल, ये एक चीज एक दो दफा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुकी है, और ये इंशाल्लाह अभी छुट्टियां खत्म होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सोसाइटियां सारी इनके साथ मिल बैठने वाली बात है, क्योंकि एक जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने कहा था कुछ हमारे मौजूआत हैं जो एज अ डेनिश मुस्लिम उनको उस तरह डील करना है, दूसरा ये वाला जोन सा डेनिश ये हमें डेनिश पाकिस्तानी की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज मैंने पता लगवाई है कि पॉलिटिशियन बड़े बड़े आपसे मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग सारे ही कर लेते हैं, अगर मेरे कॉन्टेक्ट हो मैं करवा दूंगा, हमारे सोशल डेमोक्रेट के इतने जानने वाले हैं जो बैठे हुए हैं, मतलब अच्छे मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग कर भी लेंगे, मगर अगर उनसे अगर काम निकलवाना है तो जिस तरह नहीं फिर उनके काम भी आना पड़ता है, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी माशाल्लाह, कोई इस तरह सपोर्ट करना है किसी को, मतलब गिव एंड टेक चलता ही रहता है जी पॉलिटिक्स में भी, इधर भी कहीं भी कोई ना कोई गिव एंड टेक है।
1: यार लेकिन जो हमारे इंटीग्रेशन के वजीर हैं वो तो हमारे कल्चर को भी समझते हैं, मिक्स भी रहते हैं दोस्तों, उनकी दोस्ती भी है गैर मुल्कियों के साथ, आते जाते रहते हैं उनकी मुवाफल में, उनको पता है हमारे कल्चर का या गैर मुल्कियों के कल्चर का, फिर भी उनके जो बयानात आ रहे हैं वो काफी सख्त आ रहे हैं।
2: बस वही कल बैठ के वही मजाक भी थोड़ा सा हो रहा था, सीरियसनेस तो है मजाक भी हो रहा था कि मॉडर्न पोलिटिक्स को हम जितने जानते हैं महफिल में बैठे हुए थे कि वो सख्त होने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर आप वीडियोस नोट करें उस तरह से सख्त लग नहीं रहा, वो जिसे नहीं कहते तकेनाल, मगर वो सोशल डेमोक्रेट की इस वक्त पॉलिसी यही है जी, और जितनी देर तक मेटे है और ये सोशल डेमोक्रेट का भी रहेगा तो फुल चीक में कोई नरमी उस तरह आने नहीं लगी, तो मगर ये है कि मौत उसको उससे ये पाकिस्तानियों के मामले में स्पेशली हमें वाकई में करना चाहिए, मगर एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी करके मीटिंग्स करके उन्हें पता करना चाहिए कि क्या चाहिए यार इनको, मसला इस चीज का एग्जैक्टली क्या है, एक एक सही मुद्दा अपना लेके जाए تو وہ میں بھی انشاءاللہ پتا کروں گا، مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنی فل تیاری سے جانا چاہیے، صرف اس سے نہیں کہ
1: آج آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی ماسٹر صاحب سے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میری کوئی ریلیٹیو ہے، ان کے بچے ماشاء اللہ غالباً 40-45 سال انہوں نے عمر بتائی، انہوں نے کہا سسٹم تو ان کو ویزا دے رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن ان کے بچے جو ہیں کافی پڑھے لکھے پڑھ گئے، ان کو ویزا ملتا رہا، لیکن اب انہیں مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے، انہوں نے ڈیفینیٹ ان کے میاں اچھی خاصی پوسٹ پہ ہیں، انہوں نے ان کو کام نہیں کروایا کہ آپ بچوں کو زیادہ لک آفٹر کریں، ان کے بچے سارے پڑھ گئے ہیں، لک آفٹر ماں نے کی ہے، لیکن چونکہ قانون قاعدہ ایسا ہے کہ جب تک وہ شرائط پوری نہیں کریں گے آپ کو ویزا نہیں ملے گا پکا.
2: بس یہ آ گیا نا، وہ میری ایک دفعہ لاسٹ لیکن سے دیر بات ہوئی تھی، کہتا ہے یہ بند فورم میں تو وہ بھی مانتا تھا، اور یہ تو اگر کوئی جتنے اچھے پولیٹیشین بند فورم میں مان جاتے ہیں کہ لا جو انہوں نے بنایا ہے اگر وہ 2% کو بنا اٹیک کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر وہ پھر بھی باقی 99-98% اس میں رگڑا جاتا ہے، کوئی بھی لا ایک کو بنانے کے چکروں میں یہ اچھے بندے مارے جاتے ہیں ہمیشہ.
1: لیکن پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا، ڈکٹیٹرشپ ہوئی.
2: بس یہی ہے جی، اسی لیے تو میں بھی اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ جو ون سائز فٹس آل، اس کے ہاتھ میں میں کبھی بھی نہیں رہا ہوں. ہر چیز کا مطلب ہر کیس کا ایک اپنا اپنا مدعا پہلو ہوتا ہے، یہ کہ ایک سسٹم کے تحت ہے کہ جو ون سائز فٹس آل جو تھیوری ہے یہ مجھے کبھی پسند نہیں ہے. اور یہ تھا یہی مڑوا رہنے کی پارٹی کا، کافی چیزوں میں ایسے ہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہو،
1: مطلب پارکنگ کے مسائل ان دنوں میں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، کل میلے پہ بھی آپ نے پارکنگ کا سسٹم دیکھا کہ گاڑیاں جو اتنی زیادہ تعداد میں، سب گاڑیاں تقریباً جو ہے اب تو الیکٹرک گاڑی آپ کو نظر آتی ہے، پیٹرول والی ڈیزل والی تو بہت کم نظر آتی ہیں، گاڑیاں زیادہ تر الیکٹرک ہیں، لیکن پارکنگ کا پھر بھی مسئلے مسائل بنتے رہتے ہیں. لیکن شہر میں سائیکل کے لیے کو اتنی بڑی جگہ بنائی جاتی ہے، سائیکلوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، سائیکلوں کی وجہ سے دائیں بائیں مڑنے میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان کے علیحدہ بین بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے سائیکلوں کے لیے ہر قسم کی جو ہے اجازت ہے، پرائیویٹ کمپنیاں بھی سائیکلیں لانچ کر رہی ہیں، الیکٹرک سائیکلیں لانچ کر رہی ہیں. تو کیا جب گاڑیوں کو اجازت ہے پھر سائیکلوں کو اجازت ہے، تو گاڑیوں کا پرابلم ہے، پارکنگ کا پرابلم ہے، یا سائیکلوں کا پرابلم ہے؟
2: یہ تو انفراسٹرکچر ہی پتہ نہیں کون بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ادھر بیوروکریسی کا بڑا کوئی سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو سڑکوں پہ کام کرنا شروع کیا ہوا وہ لوگ پٹ رہے ہیں کہ یار اس پلاننگ کے تحت تم لوگ کام شروع کرتے ہو، ایئرپورٹ سے آنے جانے کا مطلب جو ان سا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور میرا ایک بڑا اچھا دوست ہی بولے بن گیا ہے مڑوار میں، کوپن ہیگن میں ہی ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ پالیٹکس چھوڑ گیا تھا یہ سال ڈیڑھ پہلے، مطلب کہ ان کو منیل ویل سے تھوڑا سا پہلے کا تیار نہیں کرنا، اور وہ بیسیکلی ڈینش ہی ہے، وہ خود یہ پیکو پیکو چکنک اور اس میں اس کی پڑھائی ہے، وہی کام کرتا ہے. کہتا ذیشان یار مسئلہ ہماری پالیٹکس کا یہ بھی ہو گیا کہ جو اب میں ایکسپرٹ ہوں نا اپنی فیلڈ کا، کہتا کوئی سنتا ہی نہیں، اپنی مارے جا رہے ہیں. کہتا میرا کوئی نہیں دل یہ کرنے، میرا کوئی نہیں دل، مگر پھر یہ ہے کہ اسے واپس لے آئے کیونکہ بڑا محنتی بندہ ہے اور بڑا قابل بندہ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مڑغان کی پارٹی ہے اس میں کافی ایسے بندے آئے ہیں جو فاؤلی ہلز اپنی کی وجہ سے آئے ہیں، مگر اب میں وہ میرے فرسٹ کا جس طرح آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ 11 سال فارم رہ چکی ہے، 7 سال سے اب وہ پرائم منسٹر ہے مطلب ڈنمارک کی، وہ 24 سال کی عمر سے آئی ہوئی ہے فولکر سنگھ میں، نہ اس نے آج تک کوئی کام کیا نہ اس کی اس طرح سے کوئی ہے، مگر یہ کہ پالیٹکس میں وہ شیر نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مجھے جو سب سے بڑا لگتا ہے ایز اے ٹیچر بھی، اور کہ آج کل پالیٹیشین سارے پالیٹکس پڑھ کے بن جاتے ہیں ینگ سے، مطلب وہی انگتا شخصیت سے چلے اور کیریئر بن گیا نا پالیٹکس، اس میں یہ ایکسپیرینس نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے جو سب سے بڑا میرے ایک لڑائی رہی.
1: اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اب سارے جو ہے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سسٹم میں جا کر آپ کو پاور ملتی ہے،
2: بس یہ، اور یہ سمجھ آ گیا ان کو. آپ دیکھ لیں، میں ابھی پچھلے دنوں سروے پر دیکھ رہا تھا، میری کوئی وہ ینگ بچے تھے ان کا کوئی پروجیکٹ تھا، انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا کہ ینگسٹرز کو کیسے انوالو کرنا چاہیے پالیٹکس میں، اور میں نے کوئی سروے دیکھے تو پہلی بات تو رائے صاحب یہ میرے خیال سے کوئی ڈنمارک کی ٹوٹل آبادی میں سے 2-3% تو صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہے صرف، और उनमें से बिल्कुल ही 1% नीचे पहुंच जाते हैं जब आप बोलते हैं कि यूथ इनका हिस्सा है। और हमारे फिर अगर आप कर लें जो गैर मुल्की बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तकरीबन है ही नहीं कहीं, और वो जो दूसरे हैं वो बस बनते बनते चलते जाते हैं और फिर पावर पावर ऐसे आ जाती है। और इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का, काफी काफी जगह के स्कूल पेन है और क्योंकि सारे बैठे हुए हैं मगर इनको पता है कोई नहीं कि काम किया गया है नहीं कभी, तो अंदर अंदर बैठ के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सारे।
1: तो जीशान आप चूंकि स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, अगर देखा जाए तो फिलहाल जब हम पढ़े लिखों की बात करते हैं आपका नाम आ जाता है, कासम नज़ीर का नाम आ जाता है, काशिफ का नाम आ जाता है, जोहर का नाम आ जाता है, इसी तरह और भी जो अपना अरफान का नाम आ जाता है, जब आप लोग क्योंकि तनवीर तो सियासत छोड़ ही गया, नदीम फारूक का नाम आ जाता है, जब आपस में आप लोग बैठते हैं तो आप लोग किस तरह की बातें करते हैं?
2: मेरा तो अब माशाल्लाह सबसे अच्छी बड़ी गपशप है और ये है कि खुल के बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार क्या करें क्या ना करें, पॉलिटिक्स को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम सबको ये इस चीज पे तो अग्री है कि बड़ा ही स्लो प्रोसेस है अंदर जाके भी कि बंदा बोले कि अंदर अभी पहुंचा ही और मैं बस चेंजेस लाने लगा हूं, वो बड़ा औखा काम है, बड़ा स्लो बड़ा ब्यूरोक्रेटिकल अपना मतलब ये हम काफी बात करते हैं कि चेंजेस आती हैं मगर बड़ी स्लो, तो बड़ा सबर वाला काम है वैसे ये
1: सफर वाला काम है। मैं वैसे बात करूं कहीं आप भी तो नहीं वो सारे आप उस पे बैठ के करते यार अब क्या करें हमें वोट देने वाले भी अजीब अजीब डिमांड हमसे करते हैं।
2: नहीं ये है कि असल में मैं हम लोग जो इस दफा लड़े हैं उससे पहले तो अभी पता नहीं मगर स्पेशल जो फॉल्क सिंह वाला लड़े हमारा अभी तक तो यही है जी कि एक ये स्ट्रेटजी है कि अगली दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड हम सारे इधर रहते हैं, हमारी अक्सरियत सारी इधर है, कैंडिडेट सारे एक ही ओमान में खड़े हो जाते हैं दो ओमान में खड़े हो जाते हैं, हमें जाहिर अपनी प्रोफाइलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आगे तक भी पहुंचना पड़ेगा कोशिश करके। अब ये जो फीन या कोई यूलर्ड के इलाके इनमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरह कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या शेलन अब आप ऐसे ही देख लें कि शेलन में एक शेलन क्राइस भी होता है उसमें भी हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होता, हम लोग कोपनहेगन और कोपनहेगन के ओमान में बस रह जाते हैं। तो ये एक गुफ्तगु सब भाइयों से चलती रहती है कि हम कुछ स्ट्रेटेजिकली इधर कर सकते हैं इससे फायदा हो कि सारे मतलब इधर ओमान में आके खड़े हो जाए आपस में एक दूसरे के साथ कर कुर के लो जी ठप्पो ते कार चलो, उस चीज से बचने के लिए ये एक स्ट्रेटजी सोचने वाली है। तो उसके बाद जाहिर है वो तो आपको भी पता है उस पर अब क्या रोना और कि ये कि कौम निकली नहीं फिर भी और आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस दफा भी नहीं निकले जब
1: इस दफा एक चीज बड़ी फेलियर है कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि 40,000 हम लोग हैं हम अपना एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना सके
2: जी, और बस ये है कि मगर इसमें अब शर्मिंदगी है वही मैं कह रहा हूँ, इसमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए हमें, अब इसमें अब बैठ के कोई ढूंढना चाहिए स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए कि कैसे होगा और मिल बैठ के होगा, मशावरत है एक पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कंपटीशन भी होता है मगर कुछ देर तक साथ भी चलना पड़ता है, जिस तरह आप देख लें हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है, अब हम जब किसी भी पार्टी से लड़ते हैं एज अ टीम लड़ रहे होते हैं मगर लड़ तो एक सीट के लिए रहे होते हैं, इन दी एंड पर्सनल जो उनसे वोट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसी को 800 वोट मिले किसी को 802 मिल गए वो सीट ले गया, मगर उससे पहले आपको एज अ टीम भी रेडी होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, और हमें भी ये याद रखना पड़ेगा कि इन द एंड यस दौड़ अपनी अपनी मगर जब तक मिल के स्टार्ट नहीं करेंगे फिर वो बिल्कुल ही रह जाएंगे सारे, तो इंशाल्लाह मिलकर स्टार्ट लेंगे इस दफा और फिर आगे जो हिम्मत ज्यादा मारेगा इंशाल्लाह जो मतलब ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर सकेगा वो इंशाल्लाह अंदर जाके बैठे हमारी नुमाइंदगी करें।
1: जीशान आखिर में ये जो हमें आजकल मैंगो का फेस्टिवल का जो जोश चढ़ा हुआ है पांच छह छह प्रोग्राम कराने के लिए हम मेहनतें करते हैं जाते हैं लोगों को बुलाते हैं स्टार लगाते हैं, तो क्या ये भी कोई एक ये क्या ट्रेडिशन बन जाएगा या इसमें भी कोई चीज इन्वॉल्व है?
2: पता नहीं जी मगर इस साल तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं तो वही देख रहा था कल अब बॉनपी में हुआ है अगले हफ्ते एल्बसलोन में हो रहा है फिर एक और होएगा और फिर 19 तारीख को इधर हमारे बेलारुख तक ले आया माशाल्लाह इधर भी आ जाएंगे, तो ये हमारी कल भी मुलाकात हुई थी उधर, तो निकल रहे हैं, बच्चों को भी जरा शऊर आया दोबारा कि हमारे यार इधर प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मगर कल मैं वही आया था जब मेले से, मैं कह यार इधर भी हमें चाहिए कि लोग आए, यार पॉलिटिकल करना नहीं है मगर किसी तरह कोई, क्योंकि अब हम लोग काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे होती है, यंगस्टर से भी हुई थोड़ी बहुत जिन्होंने जाना, ओ आप शान है, हाँ जी शान है, इधर आके हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है आके गुफ्तगू करना, बात करना। इस साल असल में फॉल्कन साइंस वेल हो चुका है तो इसलिए लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी शऊर है, अगले साल जब होगा शायद नहीं होगा, मगर इसको किस तरह बनाई रखना है हमने, तो वो मैं अब सोच रहा था कल गारा आके कि किस तरह इनको हम थोड़ा सा ऐसे सोसाइटी को भी स्ट्रांग करने में, कम्युनिटी को स्ट्रांग करने में भी इन मेलों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह तीन तीन चार चार तो हो रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हमारी कोई तंजीम पॉलिटिकल होना नहीं चाहती, हमारी कोई तंजीम मतलब उस तरह ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहती, मगर ये है कि बेहतरी चाहते हैं हमारे लिए, तो कुछ स्कीम लगा ही रहा था कि किस तरह बातचीत हो सकती है, इतने बंदे आते हैं, स्टेज भी लगा होता है कि कुछ हम उसमें
1: है ना, नहीं उसमें जो है पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो तकारीर भी करें, लोग उनसे सवालात भी करें, अच्छे माहौल में सारी बात होनी चाहिए ना, खाली हम लोग खाने के मूड में चले जाते हैं, मेरी जरूरत है मैंने खाना खाना है, बच्चों की जरूरत है उन्होंने आइसक्रीम खानी है या फ्रांचीज लेनी जी, है जी, उसके अलावा भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना।
2: बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ये सोच रहा था, जिस तरह चले कौन लॉस तो होता है वो तो बड़ा होता है, मगर इधर डेनमार्क भी आप देखें फर्स्ट में ही आता है, उधर भी ऐसे मेले ही कर लेना, एक तरह के मेले लगते हैं, स्पीचेस होती हैं थोड़ी बहुत बीच में, थोड़ा शोहर मेला होता है, इसी तरह आप संथेंस ये 23 तारीख को जो इनका जलाने का है उसमें भी पोल छेला होती है, आते हैं पोल छेला करने जाते हैं, माशाल्लाह मैं भाई नदीम का पढ़ रहा था कि भाई नदीम कहीं गए हुए थे टॉस्ट्रोप अपने पोल छेल करने के लिए।

0: पावर लगती है। तो मैं वही कह रहा, हमारे इतने लोग हैं जो एक दूसरे, हम कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह शुगर मेला भी और साथ सीरियसनेस दोनों साथ साथ लेके
1: सीरियसनेस
0: चलेंगे इंशाल्लाह।
1: सीरियसनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। बहरहाल जिन जो मेहनत करते हैं डेफिनेट वो मेहनत करते हैं तो कुछ कमाते भी हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे कमाएंगे भी कुछ नहीं।
0: बिल्कुल, और ये है कि बस इंशाल्लाह थोड़ा मिलकर अगर स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है अभी इन मेलों में खुद भी
1: मेलों में
0: आऊंगा,
1: पार्टियों
0: अभी
1: को
0: लगेगी
1: आना
0: छुट्टी।
1: चाहिए जी, सियासी पार्टियों को आना चाहिए, उन्हें अपने स्टॉल लगाने चाहिए और कुछ फंक्शन में जो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए।
0: जी, क्योंकि ये तो देखिए अभी बेला ग्रुप में खामा माकिर होगी, वो भी इस साल हम मुड़गार ने बैठे हुए थे, अच्छा जी इस साल हमने स्टॉल लगाना है कि नहीं लगाना। बेला ग्रुप में सोशल डेमोक्रेट हर साल लगाता है, तो ये है कि मतलब, और हम सारे अगर एक जगह भी आके खड़े हो जाए उधर, बस लोगों का एक बना रहेगा ना कि यार अच्छा यार सारे आए हुए हैं, इकट्ठे मिलके खड़े हैं, चलो गुफ्तगू होगी, इंटरेस्ट होगा। तो ये एक आइडिया मेरे जहन में कल आया था, अब आपके रेडियो के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। इंशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइज करने वाले उनसे भी इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे,
1: लेकिन
0: और जो
1: मसला
0: बाकी
1: ये है
0: हमारे
1: कि अब
0: बहन
1: सब
0: भाई।
1: डेने सियासत करना चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे अपने अपने जो सियासी जो हमारी पार्टियां बनी होती हैं, हमारे रूट्स बने होते हैं जिसे हम जमहूरियत का नाम देते हैं, तो ज़्यादा फोकस हम उस तरफ करते हैं, ज़्यादा इधर नहीं फोकस करते कि हम वोट क्यों नहीं देते, पार्टियों में मेंबर डेनिश पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बनते या इन पार्टियों में
0: जी
1: जाते
0: बिल्कुल
1: क्यों नहीं है, इस तरफ हम तवज्जो
0: बिल्कुल
1: नहीं देते। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं जी हार गए, हम इतने ज़्यादा बंदे थे, हम पार्टिसिपेट उस तरह का करते नहीं हैं, तो गिले बनते ही बनते हैं, कभी मीडिया से बनते हैं, कभी सियासतदानों से बनते हैं, कभी कम्यून की तरफ हम चल पड़ते हैं, कभी पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते हैं और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते कम कर क्या रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जाहिर है करना खुद से शुरू चाहिए, गिला भी आप करें, मगर यह है कि घर बैठ के नहीं, बाहर निकल के काम करके साथ साथ गिला करें। मेरी असल में हमेशा ये सोच रही है कि गिला अगर करना है यार तो मतलब इस पे नहीं करना कि यार सुनी सुनाई बातों पे घर बैठे बैठे गिले करने हैं, बाहर निकल के देखो, जहां फिर नहीं आपको ठीक लगता कुछ, फिर गिला आप कैसे भी हो यार, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मगर
1: मैं
0: ये है
1: कल
0: कि
1: बात
0: अगर
1: कर रहा था, मैंने कहा ये जो ट्रैफिक मिनिस्टर है उन्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए, हर रोज जो है ना हफ्ते में 7 दिन एक बार चला के देखें लगातार, ताकि इनको पता चले ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं।
0: बिल्कुल, मेरा तो दिल करता है हफ्ते में एक एक दिन कम से कम इनका जो इंफ्रा मिनिस्टर है वो किसी फ्लाई इन जाए एक एक दिन करके, स्कूल वाला जरा स्कूल आके देखे, ये दुनिया बड़ी अंदर बैठ के चलाना बड़ा मुश्किल है, मगर ऑन फ्लोर होके बड़ा डिफरेंट होता है काम करना। तो इसीलिए देखे ना, मैं आज तक बड़ा बड़ा काम था, सारे कहते हैं आगे आगे क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं जा रहे थे, मैं यार मुझे स्कूल में यार बड़ा ही मजा आता है, इन बच्चों के साथ इनको इधर से आगे भेजना जो उनसा है वो बड़ा पसंद है मुझे। अब एक नई बात निकली, वो जो आपको भी पता होगा, गवर्नमेंट अब निकाल रही है लिस्ट निकाल रही है जी, हुनर तौली से स्कूल, उनमें एक बेलारूस का स्कूल भी है, और हमें शक है कि उनमें से वो स्कूल हमारा भी हो सकता है। तो मैं कह यार अब ये देख लो, इस स्कूल में मेरा रहना और ज्यादा जरूरी हो गया, जब ये स्कूल इस लिस्ट पे आ गया फिर तो मेरा रहना और भी ज्यादा जरूरी हो गया, मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि इस मतलब ऐसी ऑप्शन हमें उठानी चाहिए मिलकर, तो यार मेरा लोकल स्कूल है वो इस लिस्ट पे है, उसको इससे
1: इस पे
0: निकालेंगे
1: यार
0: नहीं।
1: जाना चाहिए, जो स्कूल बोमिस्ता होता है या होती है उन्हें भी जाने क्लासों में बैठना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए, ये खाली बैठ के मीटिंग कर ली, ग्रुप मीटिंग होगी उसमें अक्सरियत ने वोट दे दी जो बिल पास कर लिया।
0: जी, और बड़ा बड़ा होता है जी इधर कमून के लेवल पे, तो अब मेरा थोड़ा कांटेक्ट भी है, हाथ भी डलता है इनको, मुझे भी बार बार से काफी करता रहता हूँ कि मतलब ये कुछ तरीका कार है।
1: बहरहाल आप मीठी मीठी जुबान में बड़ी बातें कह जाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, छुट्टी वाले दिन आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
0: आपका शुक्रिया राजा साहब, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है सबसे मेलों
1: इंशाल्लाह
0: पे। ठीक है जी, इंशाल्लाह, ओके।
1: सामान नाजीन, ये थे जीशान जिनकी आप बात सुन रहे थे, वो बड़ी खुल के बात करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं और दोस्ती की शक्ल में बात करते हैं, वो चाहते हैं तब्दीलियाँ हों, वो चाहते हैं कि हर चीज़ में तब्दीली हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी होता है, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना वो ज़्यादा डेनिश पार्टियों में जाएं, कम्यून में जाएं, पार्लियामेंट की तरफ तो जो दें, कम्यून की तरफ तो जो दें, और बाकी जो सियासत है वो बेशक करते रहें, लेकिन जो आपकी सियासत है जहाँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल है उस तरफ ज़्यादा फोकस करना।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 28/6/2026 کا پروگرام ہے، 3:40 ہو جاتے ہیں۔ سمجھ، صبح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور بات چیت آپ سے کریں گے، کھل کر بات کریں گے، موسم کی بھی بات کریں گے۔ اس وقت دھوپ جو ہے وہ کڑاکے کی نکلی ہوئی ہے، رات کو بادل کڑکتے رہے، بارش ہوتی رہی، لیکن صبح آپ دیکھ لیں کتنی جلدی موسم تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سیاست بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہمارے لوگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے موسم کے ساتھ چلنا ہے یا کوئی موسم میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرنا ہے۔ سیاست چھٹیوں پر بھی ہے اور سیاست کام بھی کر رہی ہے، ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ٹریفک کی جب بات کرتے ہیں تو سائیکلیں بے شمار ہیں، ایکسیڈنٹ بے شمار ہیں، پرائیویٹ سائیکلیں بھی بہت ساری الیکٹرک کی بازار میں جگہ جگہ جو ان کی جو ہے وہ سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور ٹریفک کو بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے۔ قانون روز نئے بنتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، اب بچے اسکول سے جو ٹوپیاں لے کر نکلے ہیں وہ گاڑیاں لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب چھت بھی لازمی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچے جو ہے الکوہل بھی پیتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ زہر ہے وہ فل بھی ہو جاتے ہیں، فل نہیں بھی ہوتے، قانون قاعدہ ہوتا ہے، ان کو اجازت ملی ہوتی ہے تو یہ کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشن ہے۔ اگر ٹریڈیشن میں یہ ساری چیزیں جلتی ہیں تو پھر ٹریڈیشن ہے یا قانون ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور جتنے آپ کے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو السلام علیکم۔ گرمی اس وقت جیسے وہ کہتے ہیں فوکتے ہل، جیسے پاکستان میں گم ہو جاتا تھا، اور گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پکھے کیا اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو خواب بارش ہوئی لیکن موسم اچھا ہو گیا، ٹیمپریچر کل گرمی نے کل ریکارڈ قائم کیے ڈنمارک کے اندر، اور 1975 کے بعد بہت زیادہ گرمی یہاں کل ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ جرمنی میں، فرانس میں، اسپین میں 325 سے، اسپین میں 325 سے زائد آدمی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پانی کی زیادہ ضرورت کریں، بچوں کو پانی میں پانی پلائیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، نمک لیں، کیونکہ جب آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر سے ایسڈز باہر نکل رہے ہیں، نمک باہر نکل رہا ہے۔ جب باڈی سے نمک باہر نکل رہا ہے تو پھر آپ کی باڈی کو نمک کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ایسے سوڈا وین پیئے جس کے اندر نمک ہو، جوس ہو آپ پیئے وہ، یا نمک والا، نیمبو والا پانی پیئے تاکہ وہ پانی جو ہے آپ کی باڈی کے اندر رہے۔ اب تین بچوں نے جرمنی میں جان ان کی گئی، معصوم بچوں کی، وہ اس طریقے سے کہ ماں باپ نے کہا کہ جی ہم تو شاپنگ جاب میں جا رہے ہیں، بچوں کو گاڑی میں سونے دیا گیا، اور اسی طریقے سے وہ گرمی سے ان کی ڈیتھ ہوگی مختلف گاڑیوں کے اندر۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل نہ رکھیں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بچے اگر اس وقت پانی یا آئس کریم کی یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو لے کے دیں، اس میں بچت نہ کریں، کیونکہ بچے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے باڈی کے اندر اس وقت کتنا وسکر یا یعنی کہ پانی کتنا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور بوڑھوں کو بھی کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ آپ جہاں پہ بھی جائیں پانی ضرور پئیں، اور گاڑی سے نکلتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو آپ ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں اس سے آپ کو دو بڑی معلومات جو ہمیں ہم تک پہنچی ہے وہ ہے کہ ایک ہائی ٹیمپریچر سے جب آپ کول ٹیمپریچر سے ایک دم ہائر وارم ٹیمپریچر میں فوکتے میں جاتے ہیں تو اس سے آپ کو فالج کا بھی ڈر ہو سکتا ہے، آپ کے جو الاسٹک ہے، مسل کے الاسٹکس ہیں، ان کے اندر کچھاؤ آ سکتا ہے، آپ کو دردیں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ پیئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندے ڈرائیو کر رہے ہیں کوشش یہ کریں कि किसी किस्म की कोई अल्कोहल यानी कि ये स्प्रेज वाला या एंटीबायोटिक किस्म के ये जैसे हाथों पे हम वो लगाते हैं जेल वाला, ये गाड़ी में ना हो। और खसूसी तौर पे एन को आप कभी भी डैशबोर्ड पे या सीट पे ना रखें, क्योंकि वो जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो आरसी शीशे की तरह वो गर्म होके तो उसको आग लगाती है गाड़ी को। तो इसलिए ये पानी की बॉटल्स वगैरह जो है इनको भी आप जो है वो एक साइड पर रखें, ताकि ये चीजें जो है ये बिल्कुल आपको जो है वो ये प्रॉब्लम ना दे सके। तो राजा साहब गर्मी ने इंतहा कर दिया, लेकिन हम लोगों को ये कहते हैं कि वो अपनी बचत जो है वो हर सूरत में करें।
0: सब हर चीज बचत की होती है, गर्मी की होती है। 250-300 बंदे जो है वो गर्मी की वजह से जो है लुकमा अजल बन गए, तो ये कितना दर्दनाक मुकाम होता है कि बंदा गर्मी से मर गया। पानी की आप बात करते हैं, यहाँ स्कूलों में बच्चों को कहा भी जाता है, क्लास टीचर भी कहते हैं, और उसके अलावा कोई जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो उनके पास जाएं तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी उनकी इतनी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है, वो ना किसी का फ़ोन उठाते हैं ना किसी से बात करते हैं। शाह साहब, आप हर बंदा जो अपनी लाइफ जीना चाहता है, अपने पैसे बनाना चाहता है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करना चाहता है, उसे अब दूसरे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं, जिस तरह सियासत में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही।
1: देखिए जी, ये पहला सवाल तो आपको जो है ये बड़ा रेलिवेंट है, ये गूगल अल्फाज में आता है। आपके पास जो भी नॉलेज है वो दूसरे को सप्लाई करें, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये आपको उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे गर्मी कभी इतनी ज्यादा नहीं थी, अब यहाँ गर्मी इंतहा से ज्यादा यूरोप में पड़ रही है, पानी का फुकदान है। आप मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 325 से जायद आदमी जो है इंसान जो है वो सिर्फ स्पेन के अंदर उन्होंने जाने दी है। तो ये जो गर्मी है ये सडनली आपके अंदर का जो पानी है, अंदर के जो आपके नमक है, ये इसको खत्म कर देती है। उससे आप आपका जो है ब्लड प्रेशर वो लो हो जाता है, आपकी शुगर लो हो जाती है, इससे आप कोमा में जा सकते हैं, इससे आप खुदा न करे जिंदगी से हाथ। तो इसको मजाक मत समझे, पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार पिए, जितना ज्यादा पानी आप पी सकते हैं उसको पिए, और कोशिश ये करें कि जो चीज आप खा रहे हैं उसकी भी। अब एक बंदा मुझे ये सवाल कर रहा था कि मैं 7-8 कप काफी के रोज के पीता हूँ, तो काफी भी में भी तो पानी होता है। देखिए उसके अंदर पानी जरूर होता है, लेकिन कॉफीन जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके तुम्हारे ब्रेन के ऊपर और तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो असरात करती है। तो तुम एक या दो कप काफी के पी लो तो अच्छी बात है, लेकिन इस गर्मी के अंदर तुम्हारी बॉडी को जो सॉल्ट और पानी चाहिए वो अगर तुम्हारे पास नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
0: गर्मी की बात हो रही थी, तो गर्मी में जो एक और नई बात आज ब्रेकिंग न्यूज भी है कि मास्टर याकूब साहब जो किसी जमाने में बड़े एक्टिव थे सोशल डेमोक्रेट में, तो अब दोबारा उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब दोबारा वापस जो है वो सियासत की तरफ जा रहा हूँ। तो शाह साहब आप कब ऐलान करने वाले हैं दोबारा आप डायनेस सियासत में जा रहे हैं?
1: देखिए जी, इस वक्त बहुत अच्छी बात है कि इदनान यंग आदमी है, ये साथ होगा। मैंने इससे पहले भी सुना वो जो आपके साथ थे मॉडरेट के जीशान। देखिए असल में हमारी जो सियासत है वो डेनमार्क के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं कि कोई बंदा ये कह दे कि डेमोक्रेसी डेनमार्क के अंदर है। यहाँ की वजीर आजम की अब आज सुने तो वो अपने ही शहरियों को एक थर्ड कैटेगरी का शहरी करार दे रही है। वो फॉरनर्स का क्या, मुसलमानों के क्या खिलाफ वो हर वो बात कर रही है। इसी तरीके से आप इंग्लिश टॉयपेयर को देखे, मॉडर्न मैसेज को देखे, आप किसी को भी देख ले, किसी पार्टी में चले जाए, वो पार्टी जिन्होंने मुसलमानों के नाम लिए, इनिस लिसन एस एफ, वो खुलकर अब जो है वो इन पार्टियों का साथ दे रही है, हुकूमत का साथ दे रही है, और वो सत्यानाश कर रही है कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम बिल बैसा जो है नमाज के जो कमरे हैं हम उनको अपनी जगह से यानी कि सरकारी जगह से हम उनको बंद करेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स आए, यूलैंड में हुए, उडनसे में हुए, या डेनमार्क कोपेनहेगन में कुछ हुए, तो लोग खामोश रहे, लोग हंसा शुरू कर दिए। फिर उन्होंने मनाजो कुरान के इमाम का जो है मंजूर शुदा नेशनलिटी उसको कैंसिल की कि तुम्हारा तुम्हारा जो रुझान है
0: तो शाह साहब मनाजुल
1: वो
0: कुरान
1: शरीयत
0: इतनी
1: है।
0: बड़ी तंजीम है, एहतजाज करे, डेमोस्ट्रेशन करे।
1: नहीं, सुनत जैसे ना, सुनत जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के लिए नॉलेज है, ये सब के लिए। तो उन्होंने इसको इसको सबने ये कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल आपके सवाल की तरह वो डेमोस्ट्रेट करे, सब खामोश हो गए। अब
0: शाह साहब,
1: उन्होंने
0: गिले
1: फिर
0: करने
1: उन्होंने
0: से,
1: अली
0: गिले करने
1: मस्जिद,
0: से पॉपुलर चीजों से तो कोई फायदा हमें ना, आपको
1: बात
0: फायदा होगा ना सियासत को फायदा
1: राजा
0: होगा।
1: साहब, राजा साहब बात बात कंप्लीट कर लेने दें,
0: जी
1: फिर
0: शाह साहब,
1: आपको
0: जी साहब
1: समझ
0: करें
1: आएगी कि मैं
0: बात।
1: कहाँ बोल रहा हूँ।
0: जी शाह साहब,
1: फिर अली मस्जिद का मसला हुआ, कतल मसल का, हायाबाई मस्जिद का मसला हुआ, लोगों ने कहा कि ये फलाने फिरके हैं, फलाने फिरके इनको रहने दें। अब ये परसों जो जुमे वाले दिन ये जो 18,000 से ज्यादा का जुलूस निकला यहाँ से, इसको मिस यूज भी किया गया और इसके अंदर काफी गलतियां भी पाई गई, और फिर इसके ऊपर जो लेन देन अब हो रही है फेसबुक के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे पीसफुल लोग जिनको समझा जाता था, अब उनको ये कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए हमारे डेनमार्क के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन है। आज मैं एक डिबेट में हिस्सा ले रहा था जिसके अंदर इंगा स्टॉयबे जो है वो तकरीर में ये बात कर रही थी, और उसकी तकरीर के ऊपर बहस हो रही थी। वो ये कह रही थी कि डेनमार्क जो है ये एक क्रिश्चियन लैंड है, ये एक ईसाई मुल्क है। तो मैंने उसको सवाल ये लिखा कि जो उसके अंदर राइटर था कि जो ये बात कर रही है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि डेनमार्क एक ईसाई मुल्क है? तो क्या अगर ये ईसाई मुल्क है और ये मजाक कर रही है, जोक कर रही है, या ये सही बात कर रही है? तो उसके बाद मैंने पूछा कि अगर ये ईसाई मुल्क है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम और हजरत बीबी मरियम का नाम इतनी जगह कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है, तो इन्होंने किस तरीके से ईसाइयों को इजाजत दी कि वो कुरान मजीद को यहाँ पे जलाए? तो इसका क्या ये ईसाई ऐसा कर सकते हैं जो इस्लाम के बिल्कुल बहुत ही क्लोज है? तो इन चीजों से फिर लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी अच्छा जी ये शियों ने निकाला था, वो मनाजो कुरान वालों ने निकाला था, वो वहाबियों ने निकाला था, वो फलाना गिलानियों ने निकाला था, अब शाह निकालेगा, फलाना निकालेगा। ये आस्था आस्था हम सबको गर्दन से पकड़ लिया इन्होंने, और अब हमें ये एक ऐसी किश्ती में बैठा सवार कर रहे हैं
0: तो शाह साहब,
1: कि
0: ये
1: जिसके
0: काम
1: अंदर
0: हम क्यों
1: बेशुमार
0: करते हैं
1: होल्स
0: जिसपे
1: है।
0: कानून में सख्तियां आती हैं, हम ये काम क्यों करते हैं?
1: देखिए जी, हम ये काम इसलिए कि जो जिनके पास नॉलेज है वो नॉलेज नहीं देते, और जो मसाजिद यहाँ दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं उनके पास ना यहाँ के ग्राउंड लॉ आइन का कोई उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास अपनी लोकल कम्युनिटी का कोई नॉलेज है। बस वो ये समझते हैं कि हम थोड़ी बहुत डेनिश बोल लेते हैं, तो देखो जी हमसे ज्यादा हमने पुलिस से बात कर लिया तो हमने सारा कानून समझ लिया। हालांकि जो जो आप डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या आपको पता है कि इन्होंने क्या नया कानून निकाला है? इन्होंने कहा है कि अब जितनी भी डेनमार्क के अंदर कोई भी मजहबी मुसलमान जुलूस निकालेगा उसके अंदर काला झंडा नहीं वो लहरा सकते। वो कहते हैं ये काला झंडा जो है इस्लामिक, ये वो जो आइस है उसका है, डाइस वाले का, उसका ये झंडा है, लिहाजा ये दहशतगर्द तंजीम है, हम इसको नहीं आने देंगे। ये इनका सत्यानाश, इसको इनको किसने बताया? ये तो
0: शाह साहब, ये
1: इस्लाम का
0: लंबी
1: सबसे
0: बहस
1: पहला
0: हो
1: झंडा
0: जाएगी,
1: है।
0: ये इन्फॉर्मेशन होगी। अदनान, आपने बात सुनी शाह साहब की, आप क्या कहेंगे?
2: डॉक्टर साहब इसमें दो राय हैं, सुनी है कि मसले हैं, मिसाइल भी हैं, और ये देखा जाए तो ये तो एक वो डिबेट है जिसके ऊपर पहले मैंने कहा था कि एक एक फोरम बनना चाहिए और इस्लाम के हवाले से। मैंने आपको जैसे मालूम होगा कल मैंने जैसे आपको पता है एक फेस्टिवल था और वहां पर बड़े ये आए हुए थे, और मैंने यही कहा था कि मैंने तो आपको नवंबर में ही कह दिया था 2025 में कि इस्लाम टारगेट में आएगा और हर चीज जो है उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाएगा और उस पर क्या कहते हैं आप लोग को वोट करना चाहिए। और वहां पे वही बात तो हमारे प्रोग्राम में भी एक हुई थी एक टाइम पे कि हम कोशिश करेंगे कि ये इंटीग्रेशन मिनिस्टर से मुलाकात की जाए और बात की जाए, पर उसके अंदर मसला ये है कि आप लोग इंटीग्रेशन मिनिस्टर के साथ बात तो कर लें प्रोग्रेस में कर लें, मगर मसला ये है कि वो मसाइल हल नहीं हो सकते जो हम उसको खुद करने पड़ेंगे, और हम खुद गलतियां करते हैं इस मुल्क के अंदर तो फिर हम उस गलतियों का क्या कहते हैं नतीजा भी खुद भुगतते हैं। अब आप एक सिंपली बात देखें कि हम मुसलमान जो हैं हम चाहे ना तो एक चीज को बदल भी सकते हैं और हम चाहे तो एक चीज को क्या कहते हैं समझ भी सकते हैं। अब मैं एक आपको हवाला दे देता हूँ सिंपल वे में एकदम। हम जुम्मे की बात करते हैं कि जुम्मे का डिबेट चल रहा है कि इन्होंने क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मर्द आगे थे औरतें पीछे थी, ठीक है इनकी बात राय सही है। 24 घंटे बाद एक मैंगो फेस्टिवल हुआ है, उधर लोग सारे इकट्ठे थे, आप लोग ये क्यों नहीं फोकस कराते कि जब आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि 24 घंटे बाद आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है सबको, फीमेल भी उधर है, बच्चे भी उधर हैं, मेल भी उधर है, सब उधर है, आप इन चीजों को जोड़ के फिर आप एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट बनाए। इन्होंने एक इवेंट का क्या कहते हैं शोर मचा दिया हुआ है, मगर इनको ये नहीं पता कि 27 जून से लेके 19 जुलाई तक 5 बिग इवेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर मुसलमान जो हैं करा रहे हैं ऑलमोस्ट, और वहां पे फीमेल्स भी और चिल्ड्रंस भी और मेल्स भी इकट्ठे हैं। मसला ये होता है कि जब आप डिबेट शुरू करते हैं ना तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि किस पॉइंटों पे होना चाहिए। ऑब्वियसली इस वक्त बहुत सारी चीजें टारगेट हो रही हैं क्योंकि ओइलिंग डिबेट जो है वो पूरा खुल चुका हुआ है और उसके अंदर हमारी अपनी भी गलतियां होती हैं, बड़ा टारगेट करते हैं। आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आप जिस मुल्क के अंदर है ना आप किसी ओहदे पे है ना किसी जिम्मेदारी पे हैं, तो आप ये देखें कि आपने कोई लेसी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये गौर करें कि आप उस वक्त कौन सी बात करने लगे, क्योंकि आप छोटी सारी गलत बात कर देंगे ना तो आप खुद टारगेट में भी आ जाए। तो इंसान को ये देखना चाहिए, और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि जितनी जल्दी कोई ना कोई मुसलमान अपना एक फोरम लाएंगे, मुसलमान इकट्ठे होंगे, मुसलमान बैठेंगे, उतना ही जल्दी हम इस बात को क्या कहते हैं लेके जा सकेंगे। अब आप एक चीज गौर से देखें, हम मुसलमान ज्यादा इस मुल्क में हम
0: अदनान
2: यहूदियों
0: भाई,
2: से
0: पहले
2: ज्यादा हैं।
0: मुसलमान को मुसलमान तो बने, नाम लिखने से तो मुसलमान नहीं होता।
1: ये मसला
2: सब ये सबसे बड़ा मसला यही है कि इंसान एक दूसरे को टारगेट करना क्या कहते हैं ना बड़ा आसान होता है। हम अंदर से मुसलमान हैं, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक क्या कहते हैं मेरे बारे में इस वक्त बड़ी सारी अफवाहें हैं, और ऐसी ऐसी अफवाहें हैं कि जिनको मैं देख के कहता हूँ कि कौन है, और जब मैं देखता हूँ ना कि वो बंदे ही मुसलमान कह रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ किस बंदे को भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलना सबसे बड़ी गलत बात है इस्लाम में, तो इस बंदे को फायदा क्या है मेरे बारे में बोलने के लिए। और मैंने वही उस दिन उसको कहा मुसलमान को, मैंने कहा मुझे बात बता, तू लाख बातें मेरे बारे में कर रहे है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन 2 मिनट में मिल जाती है और मुझे कोई दुख भी नहीं है कि तुम कह रहे हो, क्योंकि मेरा तो क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग ही हो रही है, मगर मैंने कहा कि नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव हो रही है, मैंने कहा वो तो मुझे कोई नहीं है, मगर ये बात आपकी सही है, जितनी देर तक हम अपने मुसलमान अपनी वैल्यूज अपनी चीजें सही नहीं करेंगे उतनी देर तक हम लोग चीज नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा और मुझे पता है कि इस बंदे को पता भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक मरकज का सदर था, एक मरकज का सदर था, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी कंपनी थी एक, इसने बंदे पेपर के बैग रखे हुए थे, आप बात गौर से सुनना, वहां वो बंदे जब छापा पड़ा तो पकड़े जाने लगे थे। इसने उस उन उन बंदों को इससे मदद लेने की कोशिश की। इस बंदे ने अपना फोन बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, और वो बंदे बड़ी मुश्किल से बचे थे। जब ये मुझे दूसरी बार मिला, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बंदिया तुम इस तरह की चीजें करोगे तो मुसलमानों का क्या वैल्यू रहेगा? कहता है, कुछ नहीं होता। मैं कहता तू मस्जिद बैठ के सदर रेत किसी चीज का तू की गल कर रहे है? मैं कह बात तो सोच कि तुम एग्जाम्पल हो कि तुम मुसलमानों को रेस्पेक्ट कर रहे हो। तुम ऐसी हरकत करोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में?
0: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी। शाह साहब, आप और अदनान कानून कायदे की बात करते हैं, आप मसले मसाइल को कानून से हल करना चाहते हैं, तो शाह साहब क्या यहाँ ज़बरदस्ती या किसी को इस कानून कायदे को चैलेंज करके हम अपना आप बनवा सकते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले जो इदरान ने बात की है ना कि यहाँ पे हमें या क्या होना चाहिए, और आपने बात की कि हमें पहले मुसलमान से मुसलमान होना चाहिए। आप 50 लीडर ले आए कोपेनहेगन से, पूरे डेनमार्क से पाकिस्तानी लीडर, आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे जी फलाना वजीर मेरा दोस्त है, फलाना मेरा मुझे चाहने वाला है, ये चाहने वाला। आप कल की और आज की फेसबुक पे मॉडर्न जो हमारा इंटरग्रेशन मिनिस्टर जो है उसकी आप सिनेगल के अंदर उसकी बातचीत देखे, उसने सर पे यहूदी टोपी पहनी है, ठीक है वो पहने, यहूदी छोड़ के वो इस्लामी पहने, लेकिन जो उसने बात की है और जो उसने एंड किया है, उसने कहा कि अब हमें जो आपकी फ्रीडम खत्म हुई है यहाँ पे, आप सड़कों पे खौफ में जब बाहर निकलते हैं तो खौफ ज्यादा रहते हैं, हम उसको खत्म करने के लिए आपके अब हमें सामने अवॉइड करना चाहिए। जो ये लफ्ज है एक इंटरग्रेशन मिनिस्टर कह रहा है, जो कहता है जी कि मैं पाकिस्तानियों का बड़ा, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई इससे बड़ा तो हिटलर भी जो था वो भी इस ओपन जो बात नहीं करता था, उसने भी आर्डर दिए थे कि यहूदियों को, यहूदियों के साथ जुल्म करें। हम आज तक उस जुल्म को भूल नहीं सके कि यहूदियों का होलीकॉस्ट हुआ, लेकिन अभी ये जो मुसलमानों का होलीकॉस्ट हो रहा है इसको कौन, इसके ऊपर कौन आवाज उठाएगा? और डेनमार्क जो है ये इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि ग्रीनलैंड का मसला जो है जो इंतहा से ज्यादा ऊपर चला गया है, और अब वो एक स्टेट ऑफ अमेरिका बन चुका है, ये उसके ऊपर उसको छुपाने के लिए ये जो सियासतदान है ये सोशल डेमोक्रेट और दूसरे ये कीचड़ अब मुसलमानों पे डाल रहे हैं। और अगर मुसलमान अब ये समझते हैं, देखे सारे यूरोप में और अमेरिका में एक बात कॉमन हो गई है, उन सब ने ये कानून बनाया और अखबारों में भी लिख दिया, मीडिया पे भी लिख दिया कि सीरियन जो शाम के अरब हैं उनको हर सूरत इस इन मुल्कों से वापस जाना चाहिए। इसी तरीके से अब वो लबनानियों को भी लेके जाएंगे, दूसरों को। नेशनैलिटी खत्म करने का अख्तियार जब उन्होंने यहाँ की गई जो मेनली बोली है उनको दे दिया है, पुलिस को दे दिया है, तो फिर इसके बाद आपके पास अख्तियार क्या है? मैं ध्यान से ये पूछता हूं कि मैं इस मुल्क का डेनिश सिटीजन हूँ, लेकिन एज ए डेनिश सिटीजन मेरा कोई इख्तियार नहीं। मुझसे कभी कभी आके पुलिस सेल्स के बारे कह सकते हैं कि हम तुम्हें नोटिस देते हैं इस मकान से, आप 1 माह के अंदर आप बाहर हो, नहीं तो हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे। पुलिस को कहते हैं कि भाई हमें इससे ये डर है, झूठा केस बन जाता है, मैं अदालत में नहीं जा सकता। 1 माह के बाद वो मुझसे डेनिश नेशनलिटी ले लेते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किस मुल्क में जाऊंगा, मेरे सामान का क्या होगा, मेरे मेरे घर वालों का क्या होगा? ये जो कानून है क्या ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आते? क्या वो बड़े खुश होते हैं कि आज मेरे बच्चों ने कैप पहनी है, आज हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आज हम एंजॉय कर रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों को ये नहीं पूछते कि भाई जो आप लोगों ने यहाँ हमारा सत्यानाश किया है, जो आप लोगों ने या हम लोगों ने खुद मिलकर सत्यानाश किया इस मुल्क के आइन का, जो सबसे बेस्ट आइन था। मैं ये अलानिया कह रहा हूँ, अदनान इस बात का करेगा कि ग्रून लॉ जो है डेनमार्क का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये दुनिया का बेहतरीन कानून है क्योंकि ये उमर लॉ है, लेकिन इसके बाद जो इंगा स्टॉयबे ने कल तकरीर में ये कहा है کہ میں نے 100 میرے فادر سن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فلوٹنگ یہاں آئی تو میں نے 114 نئے قانون بنائے ان کے خلاف. تو یہ چیزیں جو ابھی ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے؟ کیا ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟
0: شاہ صاحب انہوں نے قانون کیوں بنائے؟
1: اس لیے کہ ہم خود گلے ہیں, ہم خود گلتے ہیں. ہم
0: کس بات کا کریں ہم لوگ؟
1: نہیں تو اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو واپس جائیں گے ہم سب, یہ تو نہیں چھوڑیں گے ہمیں اطنان کے آگے.
0: شاہ صاحب ایک اور آسان حال ہے, عدنان بھی سن رہے ہیں تو چودھری شافی کو بلا لیتے ہیں, نواز شریف کو بلا لیتے ہیں, زرداری صاحب کو بلا لیتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو بلا سکتے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بلا لیتے ہیں, نیم ڈور بھی جتنی, عمران خان کو بھی جیل سے نکال کے بلا لیتے ہیں, وہ مسئلے ہمارے حل کر دیں گے؟
1: نہ, انہوں نے ایک ہی بات سب نے کہنی ہے, انہوں نے کہنا جی ان کو کھڑے کر کے نا تو شو کر رہے ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں وہ سمندر میں پھینک دیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے. اگر وہ یہاں پہ آ گیا آپ کے ملک میں آ کر ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ایسے لوگوں کو پاکستان میں بھی ضرورت نہیں. ان کا تو سمپل یہ جواب ہوگا, وہ تو ہمیں ایکسپٹ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ جن کے بچے آج یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی ہے کیا اس کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال میں عدنان کو میں بھی لاسٹ ایئر سے سن رہا ہوں, یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے. کیا آج تک کسی بھی کونسلر نے جو الیکٹ ہوئے یا جو نہیں الیکٹ ہو سکے وہ اس بات پہ بات کر رہے ہیں؟ اب آپ ایسی اسکرپٹ آ رہی ہے, ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے, ایک گروپ ہے جس کے اندر کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں, کچھ افغانی بھی شامل ہیں اور انڈین بھی شامل ہیں. اور یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, یہ لوگ جو ہیں فیس بک پہ مختلف نام رکھ کے مختلف اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر کے یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ انہی کو جواب دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈینس کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ ڈینس, میں نے ایک دن ایک ڈینس کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک جگہ میٹنگ کریں, میں تمہیں کافی پلاؤں گا, چائے پلاؤں گا, جو کھائے گا کیک کھلاؤں گا, ہم وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ فین تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ میں نے کہا تم فیس بک پہ ہو. کہتا ہے وہ تو میری ہے ہی نہیں ہے. میں تو بالکل اس کے, میں تو سارا دن کام کرتا رہا تو میں تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ان کے جو آئیڈینٹی ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں.
0: عدنان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی ہے, عدنان آپ کو ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں, اس ملک میں پیدا ہوئے, اس ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک میں سارے کام آپ کر رہے ہیں, اس ملک کا آپ سیاست کا ایک حصہ ہیں. عدنان آپ کو کبھی کسی نے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ کبھی کسی نے روزہ رکھنے سے منع کیا؟ کبھی کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا؟
2: رضا صاحب مجھے کسی انسان نے نہیں منع کیا.
0: تو پھر ہم لوگ کیوں ہر چیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ ہمیں اسرائیل نے یہ کہہ دیا, ہمیں امریکہ نے یہ کہہ دیا, ہم نے فلاں نے یہ کہہ دیا, ہم نے فلاں نے یہ کہہ دیا. مجھے کبھی کسی نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا, کسی مسجد میں, مذہبی ادارے میں جانے سے منع, کلچر سینٹر میں جانے سے منع نہیں کیا, کبھی کسی نے مجھے روکا نہیں ہے. تو جب ہم جس طرح کے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اجازت کس چیز کی لیتے ہیں, ہم خود قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو یہ عناصر پیدا کیے جاتے ہیں, یہ عناصر پیدا ہو کر سسٹم کو دبا کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں ڈنمارک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی سیاست کو اٹھا کر یہاں کا لے کر آ جاتے ہیں, ہم آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم گلے کر شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی عدنان
2: صاحب, سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بات ہوتی ہے, میں آپ کو ایک موٹی ساری ایگزامپل بات بتا دیتا ہوں. کل ہم جیسے گئے ہوئے تھے مینگو فیسٹیول پہ, وہاں پہ دوسرے گروپ والے آ گئے تھے اور ایک گروپ والے کہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے اکٹھے کرنا شروع کرنی ہے. تو یہ تو میں اس کا منہ دیکھنے لگ پڑا, تو ایک صاحب سارے میرے ساتھ تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم لوگ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ ہم 6 کریں کہ 10 کریں؟ میں نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں, اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم 6 کر رہے ہیں نہ 10 کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی, اور ہم چھ اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, مگر آپ آئیں تو صحیح نا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. میں نے کہا ہمارا کوئی مقصد تو نہیں ہے کہ ہم پوری مارکیٹ لینا چاہتے ہیں, ہم کیا پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کوئی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں. میں کہا ہم تو ایک بس کیا کہتے ہیں लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं, चीजें होती हैं, इन्वेंट्स होते हैं, ये होता है। तो ये बात आपकी सही है कि हमें सबसे जरूरी ये है कि हम यहाँ पे फोकस दें और यहाँ का क्या कहते हैं देखें कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना फोकस दिया तो हम खुद मुसीबत में पड़।
0: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, अदनान बड़ी जो है पते की बात उन्होंने की है कि हम खुद जो है फोकस हो जाएंगे।
1: ये बात मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ। मैं आपकी बात के जवाब देता हूँ कि यहाँ हमें कोई नमाज पढ़ने, यहाँ हमें यहाँ पे कोई अपनी फ्री को कोई रोक रहा नहीं, लेकिन जो लोग सियासत में आए हैं वो इस वक्त जो पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के पीछे जो ग्रुप बैठा हुआ है वो रैशिज्म से भरा हुआ लोग है। उनको उनको ये चीज पता है कि इस मार्केट के अंदर, जैसे इन्होंने मैंगो फेस्टिवल की बात की है, उनको पता है कि यहाँ पे मैंगो ही बिकने हैं, यहाँ पे वैन बलून नहीं बिकने। लिहाजा वो पूरी कोशिश के साथ हर पार्टी के अंदर बगैर ये सोचे समझे कि इस पार्टी का मंशूर क्या है, ये पार्टी कैसे चलती है, इसकी क्या विजेक्स है, वो इसको एक साइड पर रख के वो उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपने अपने दोस्तों के साथ मिलके वो उसको सामने लेके आते हैं। देखिए, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि हमारे कोई भी जीशान हो, अदनान हो, कोई भी बच्चा हमारा यहाँ पे आता है वो लोगों को ये मोटिव निकाल रहा कि देखो भाई आप पार्टी, हमारी पार्टी में आए, यहाँ पे इसको ज्वाइन करें, डायरेक्ट सियासत में आज आप मेंबर बने, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप यहाँ के लोकल जो क्रीस है उसके अंदर बैठे कैसे एक्टिव होना है, फिर फलके थिंक के पार्टी के जरिए फलके थिंक के अंदर जो उल है वहां पे उन वो बैठे, वहां पे उनको एजुकेशन हासिल हो कि असल सियासत होती कैसे है, फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन आए तो वो पूरे ट्रेंड होकर वहां पे वो इलेक्शन के लिए तैयारी करें। अब मसला ये होता है कि हम लोग सियासत में तो आ जाते हैं, एबीसी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं तो उम्बसमैन जैसे कहते हैं, मैंने तो वो करना है। उम्बसमैन कहते हैं कि नहीं तुमने इस पर साइन करने ही करने हैं, अगर नहीं करोगे इसके ऊपर डिबेट कराओगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पुरानी पार्टी तुम्हारे लिए ये कर लेगी, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा आप घर के तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं घर जाता हूँ, मैं जाकर सोता हूँ, आप मैंने अपनी हाजिरी लगा ली है, मैं या और ना ही मैं शामिल हूँ। तो ये चीजें जो है, जब तक एक सियासतदान, जैसे अभी अदनान इतनी गर्मी में टाइम दे रहा है आपको, इसी तरीके से जब सारे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, बगैर लड़े बगैर किए इन चीजों को फोकस करेंगे कि देखो कहाँ मसला शुरू हुआ था बिल वैरसा से, अब क्या हो रहा है कि ये बड़े बड़े ग्रुप्स को ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो कल को ये अगर सबके ऊपर ये इस तरह कर लेते हैं, आज एक था क्या नाम है, बहुत ही जानने वाला फलके सिंह का मेंबर है, उसका मुझे नाम भूल गया, वो बड़ा एक्टिव है फेसबुक और सोशल मीडिया पे, उसने आज ये कहा है कि ये जो अजान है, उसने मॉडर्न मेडिसिन स्मिथ का हवाला देकर ये बात की, ये जो अजान देते हैं कल्चर सेंटर या मस्जिदों के अंदर, इसको भी हमें बंद करनी चाहिए। तो जब इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह की चीजें ये करनी शुरू कर देंगे, और ये इसको कुछ लॉ तो बन चुके हैं और कुछ लॉ हो साथ ले आए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हमारे यंगस्टर जो है उन्होंने तो कह रहे जी ठीक है हम काम पे जाते हैं आ जाते हैं, रात को सारी नमाजें इकट्ठी करके घर में पढ़ लेते हैं। अब जो बूढ़े बूढ़े हम लोग हैं
0: तो
1: उम्र
0: शाह साहब,
1: रसीदा
0: जब आप लोग आए थे तो आपको ये प्रॉब्लम थे?
1: जी, उस वक्त हम लोग झूठ नहीं बोलते थे, कोई जाके किसी की कान पोसी नहीं करता था, कोई गब्बियत नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था मैं पीछे बड़े मरबे छड़ के आया, मैं बड़ा रईस हूँ और ये दूसरा जो है ये कौन है। ये हमारे लोगों ने खुद ये खराब किया है, इन्होंने आकर सब कुछ जो है मात जो है ये दूसरों के हाथ में कर दी, और वो मात ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको एबीसी का पता ही नहीं है, और वो इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप हैरान होंगे इदनान को इस चीज का पता है कि अभी इतने सारे वेस्ट साइड के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं जिससे हम और ज्यादा बदनाम होंगे, और वो जब सामने हो जाएंगे तो फिर अभी तो ये है کہ اب یہ نہیں لکھتا ہے کہ یہ فلانا مسلمان تھا یہ فلانا مسلمان تھا یہ اب وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ایک ڈینش سٹیزن تھا یا فلانا تھا اس کو یہ سزا ہوئی یا اس کا نام لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ پرانے طریقوں کی طرح لوگوں کے آئیڈینٹی کرنے شروع کر دی کہ یہ فلانا فلانا تھا تو اس طریقے سے پھر ہماری بدنامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو کوشش یہ کیجیے کہ جیسے عمران نے کہا کہ ہمیں جتنی جلدی ہم ایکٹیو ہوں ان سارے پرانے چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کا حل نکالنا چاہیے اور ایک ایسا تھنک ٹینک یہاں پہ ہونا چاہیے جس کے اندر میجورٹی لوگ ہر طبقے سے لوگ ہوں اور اس کے اندر ڈینش بھی ہوں اور اس کے اندر ہم فرس جو ہے وہاں پہ بات نکالیں اور اس کو ہم اپنی پاور بنائیں. کیونکہ جو سینیگال کے اندر آج میں لوگوں کو بتاؤں سینیگال جیسے ہمارا مسجد ہے چرچ ہے اسی طرح ان کا یہودیوں کا ہے اور کوپنہیگن میں جو اسے آج مارٹن نے بیان دیا ہے انٹرگیشن منسٹر نے اور جس طریقے سے وہ تیار ہو کے آیا جس طریقے سے اس نے کیپ پہنی جس طریقے سے وہ اس نے اپنی اسپیچ کو اینڈ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کی جو جوئش لابی ہے وہ ڈینش لابی کے ساتھ مل کے ہمارے لیے تکلیفات جو ہے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں.
0: نیشا صاحب آپ دیکھیں نا کہ ممی یعقوبسن ہوا کرتی تھی سی ڈی کی پارٹی کی جو ان کے پہلے یعقوبسن تھے ان کے والد صاحب تھے لیکن انہوں نے تو کبھی انہوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں بات کی جتنے مطالبات ہوتے تھے اوورسیز کے غیر ملکیوں کے اس کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے. یہ حلال گوشت کا جو مسئلہ ہوا کس نے سب سے زیادہ تعاون کیا تو شاہ صاحب پازیٹیو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں نیگیٹو میں کروں کوئی کرے زیاد بکر کرے نیگیٹو ہوتی ہیں. عدنان کی طرف چلتے ہیں عدنان ایک سوال ہے آپ کے لیے جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو فیسٹیول مینگو فیسٹیول ہوتے ہیں پہلے پاکستانی فینگو فیسٹیول ہوتا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی جھنڈا نظر نہیں آتا ہے نہ ہی کوئی جھنڈیاں نظر آتی ہیں اس میں ایک صرف کاروبار نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو تنظیمات ہوتی ہیں وہ بھی کسی اپنی تنظیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے اسٹیج سجایا جاتا ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟
2: عمران صاحب اس کے اندر تو ایک بات دیکھا جائے تو میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اپنے اپنے پیڑے بینک کرتا ہے. ہم لوگ میں دوسروں پہ کامنٹس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے. ہم لوگوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے یہ جو ہمارا جو مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ لی ہوئی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور یہ جگہ ہم نے ہو گئے قریب ہمیں کافی سال ہو گئے ہیں اس کے اندر پہلے بنی پھر کافی چیزیں چینج تھی تو وہ پھر ہم ان بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں کوشش کہ ہر سال کوئی نہ کوئی انوینٹ ہو جائے ان کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم کرتے ہیں. ہمارا اپنا اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اور ہم لوگ انجوائمنٹ کے لیے کراتے ہیں اور اسپیکی پر اصل تل دکھانے کے لیے. جھنڈے کا رہا وہ تو ہم لا بھی سکتے ہیں وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارا نام پاک ڈین ہے اور ہم دونوں جھنڈے ہم نے اکٹھے رکھے ہوتے ہیں ہمیشہ ڈینس جھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے پاکستانی جھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم اب تو پہلی جنریشن تو ہے ابھی تک تو اگلی جنریشن تو یہاں کی بون ہے نا اس کے بعد تیسری چوتھی تو سو ہم اپنے انوینٹس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم 11 جولائی کو پہلا کریں گے 2026 کو سوری اور 1 اگست کو کریں گے 2026 کو اور دونوں ایونٹس ہم لوگوں کے لیے کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ہم نے سارے ارینجمنٹ جو ہے نا وہ دیکھ کے کرتے ہیں اور ہم ساری اتھارٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. ہم نے سب کو رابطے کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ انوینٹ کرنے لگے ہیں کوئی آپ کو گلہ شکوہ ہے یا کوئی آپ کی بات ہے تو ہمیں بتا دیں. قریب ہم ہر پارکنگ کا بھی ایشو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ایشو نہ بننے کہ ہماری کمیونٹی کو کوئی مسئلہ پڑے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی پاپولیشن کی طرف آتے ہیں اور ہم پوری تیاری سے آتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نہیں کرایا. ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پچھلے سال بھی کرایا اور کافی پبلک تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری کم از کم 5,000 سے تو کم پبلک نہیں تھی. یہ تو ہم
0: لیکن عدنان یہ جو سٹال لگتے ہیں تو سٹال تو چلیں جو اخراجات وہ دیتے ہیں تھوڑے دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں یہ تو کرانے والوں کو پتا ہوتا ہے لیکن وہاں چیزیں مہنگی بکتی ہیں عام لوگوں سے بازار کے ریٹ سے زیادہ چیزیں مہنگی بکتی ہیں وہاں.
2: سب یہ تو ہم نہیں نا ہم ڈومیننس نہیں کرتے کہ لوگ کس پرائز پہ چیز دینا چاہتے ہیں یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ہم हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप इतनी की चीज बेचें, क्योंकि इसमें ये भी है कि लोग हमें फिर कहते हैं कि हमारी चीज नहीं बिकी, तो वो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपकी क्या कहते हैं जो नसीब में है वही आपको मिलना है, जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलना। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि एक जनरल प्राइस रखें और जनरल चीज रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी कहते हैं कामयाबी हो जाएगी।
0: जी शाह साहब, आप देखिए अदनान की बात सुनिए, अदनान ने कितनी फेयर बात की। जी शाह साहब आप बोले। जी शाह साहब आप बोले। हमें लगता है शाह साहब की आवाज नहीं आ रही। शाह साहब का अदनान, आपको शाह साहब की आवाज आ रही है?
1: नहीं,
0: लगता है कि शाह साहब की टेलीफोन की जो है वो बैटरी ख़त्म हो चुकी है, उनका कनेक्शन जो है वो लूज़ हो चुका है। अदनान, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? हर चीज़ का हल होता है ना, देखें डिबेट भी की जाती है, तनकीद भी की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसका एक पॉजिटिव हल भी तो होना चाहिए।
2: सर देखिए, हर चीज़ का एक ना एक हल होता है, इंसान नीयत रख लेना तो नीयत से क्या कहते हैं ना हर चीज़ हो सकती है। और मैं डेली व्यूअर से कहूंगा कि हम सब मिल जाए ना तो हम मुसलमान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे दिमाग भी तेज हैं, हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। स्पेशली हम पाकिस्तानी हैं, हमारे में तो क्या कहते हैं एक विल है, और पाकिस्तानी हो, तुर्की हो, अरबी हो, बॉस्नियन हो, फलस्तीनी हो, हमें अब अपनी आवाज उठानी चाहिए और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कल्चर के लिए। ये जैसे अब लोग पटाखे चलाना शुरू हो जाते हैं, मेरे पीछे ही चल रहे हैं, तो लोगों को ये भी शूट करना चाहिए कि मुल्क के रूल्स क्या है। अब ये जो माशाल्लाह से मेरे पीछे पटाखे चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा इस मुल्क का रूल क्या है, तो ये भी चीजें बंदे को नजर में रखनी चाहिए।
0: आशा, अपना अदनान आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अदनान, ये बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे फिर आकर बच्चे ही होते हैं, तो शाह साहब का हमारा जो राबता है वो अदनान मुनकता हो चुका है, डेफिनेट उनका। हाँ जी शाह साहब, आ गए आप?
3: जी जी, वो मैं तो बात कर रहा था लेकिन वो आवाज आपकी तरह आवाज नहीं जा रही थी, तो
0: शाह साहब आपने समझा कहीं किसी ने आपको अटैक तो नहीं कर लिया?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात ये है कि जब आपने अल्पसोन में किया था प्रोग्राम तो उस वक्त मुस्लिम एम्बेसिडर के भी लोग आए थे और मुस्लिम दूसरे भी आए थे। मसला जो है, जो डेनिश हमसे, जो डेनिश रिक्वायरमेंट हमसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने एक लोगो ऑर्डरिंग में रहते हैं, आप लोग हमारे साथ उस तरीके से नहीं रहते जिस तरीके से आप 70s, 80s, 90s में थे। वो उनकी बात कुछ असली तौर पे भी ठीक है कि जब हम फैक्ट्रियों में काम करते थे, जब हम दूसरी जगह पे काम करते थे तो हम फोरमैन को, दूसरों को घरों में बुलाते थे, खाना खिलाते थे, तल्लकात, ये राजा साहब खुद यूनियन के मेंबर रहे, इनको पता सारा कुछ के कैसे होता था लोगों के साथ। अब हम लोग जो है एक लोग ऑर्डरिंग में हम घुस गए हैं, मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं तो वहां पे सिर्फ चंद एक लोगों को छोड़ के बाकी सारा अपने ही हजूम होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी औरतें हैं वो ये क्लियर करती हैं कि जब उनके ऊपर प्रॉब्लम होती है, उनको डिवोर्स चाहिए या उनको, तो वो ये कहती हैं कि भाई देखे, आप लोग हमें पीछे रखते हैं, हमें हर दफा पीछे रखते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम लोग जन्मा, तो ये जन्मा के अंदर और इस्लाम के अंदर एक चीज है कि यहाँ पे मर्द औरत के हकूक बराबर के, हर एक आदमी जो है वो लेकर चलता है। तो हमें तो 70s, 80s, 90s में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी, 2000 के बाद जब ये अरबियों ने ओवरटेक कर लिया हमें, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब हमारे पाकिस्तानी पीछे हट गए और हम लोग पाकिस्तान की सियासत को उजागर करने लगे, तो आज ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान। अब जब ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम को गालियां दे रहे हैं नौज़बिल्लाह, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे इसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मेरे साथ लोगों को होना पड़ेगा, ताकि हम एजुकेशनली और डेमोक्रेसी के जरिए जो डेमोक्रेसी डेनमार्क में खत्म हो चुकी है उसको उजागर करना चाहिए, हमें डिबेट्स करनी चाहिए। आप लोग यंग आदमी हैं, आपको चाहिए कि डेनमार्क को एल्बर्सोन में डिबेट्स कराएं, 50 आदमी हो, 30 आदमी हो, पाकिस्तानी पढ़े लिखों को बनाए, जो है यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है, जो पॉलिटिशियंस है उनको डांचों को बनाए, ताकि उनको पता लगे कि इस्लाम जो है वो गलत नहीं है, वो उसके नजरियात गलत नहीं, ये हमारे अपने जो टॉकिंग है, हमारे अपने नजरियात जो है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम लोग गलत है। तो क्या इस पे आप अग्री नहीं करते? यही तो डैमेज चाहते हैं कि हम इनसे करें। ये जो असल डैमेज है वो हमारे खिलाफ नहीं है, ये वो डैमेज है जो जो इस वक्त एक डैचो का ग्रुप है जो फेसबुक और सारे सोशल डेमोक्रेट के साथ वो ये काम कर रहा है। इसमें 16-17 वो मुर्तद हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है और जिन्होंने जुमे वाले दिन भी यहाँ डैचो के साथ मिलके तो हमारे खिलाफ बात की है। ये जो नजरिया रख रहे हैं कि हम लोग जो है होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ है, हम फलानों के खिलाफ है, भाई एक दफा 80s में ये डिबेट हुई थी तो मैंने बैंसा के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, कहा था कि देखो तुम लोग तो ओनली 5 मिलियन हो, हम पाकिस्तान में हो सकता है कि करोड़ों की आबादी है, वहां पे तो हो सकता है 4-5 मिलियन ऐसे लोग हो, हम लोगों के खिलाफ नहीं जाते, लोगों का अपना पर्सनल मैटर है वो क्या करे, हम तो चलते हैं अपने अपने आप को देखते हैं, अपने असूल को देखते हैं। हम यहाँ पे जब हम टैक्सी चलाते हैं तो टैक्सी के अंदर हमारे साथ रोजाना ये लोग बैठते हैं, ना वो हमारे दीन को कुछ कहते हैं, ना हमें कुछ कहते हैं, ना हम उनको कुछ कहते हैं, सर्विस दे के हम छोड़ देते हैं।
0: तो शाह साहब असल मसला क्या है?
3: असल मसला ये है कि जैसे हम टैक्सी में बोलते थे,
0: शाह साहब बदरान को टाइम दीजिएगा।
4: जी मैं दो बातें कहूंगा कि आपकी जो जनरेशन है ना, जो यहाँ की जो नेशन आ रही है वो बड़ी मिलजुल हो गई हुई है इनके साथ और उनका बड़ा असर रिलेशनशिप है, कामों पे भी और स्वास्थ्य पे भी। ये बात दूसरी बात दुरुस्त है कि हम जब ये फेस्टिवल करते हैं तो गोरे नहीं आते, मगर हमने देखा कि हमारे जो इंशाल्लाह ताला इस बार हम जो मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं और जो हमने 2025 में किया था, मैं आपको बात बताऊं तो बड़े गोरे आए और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर आया था और ये मॉन्टोस को भी आया था और इनकी वजह से और मेरे पास इनकी मेरे ख्याल से तस्वीरें भी हैं जहां तक मुझे याद है और ये सारी तस्वीरें वगैरह हम इंशाल्लाह ताला इस बार लगाएंगे अराउंड द वर्ल्ड। हमारा प्लान ये भी है कि हम डेनिस जो तंजीमें हैं एम्बेसडर मनी जो है उनके साथ भी रबते हैं और दूसरों के साथ भी रबते कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे इवेंट में आए, क्योंकि जितनी देर तक हम डेनिस और फॉरेंस को इकट्ठा नहीं करेंगे उतनी देर तक ये हाल नहीं है। और देखा जाए तो हमारे मैंगो जो है ना वो डेनिस बड़े खाते हैं, तो सो हमारा पूरी स्कीम है कि हम डेनिसों को भी इनवाइट
3: करें। मैं आपको यहाँ स्टॉप करूंगा, आप मुझे बताएं आप इसको माउंटेन को बोस्को को वहां बुलाएंगे तो आप उससे क्या डिबेट करेंगे, आप उसको क्या बताएंगे, कहेंगे जी आए हमारे मैंगो खाएं वाह वाह, उसके उसका रेट बनाएंगे, उसके जो देखने वाले डैनिश है उसको ज्यादा वोट दें। भाई असल मसला ये है कि जिस पाकिस्तानी से मैं बात करता हूँ वो एक ही यही राग लगाता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत उसकी फोटो है। भाई जब इसने अभी ये सेनेगाल में गया है, क्या इसने ये कहा है कि मैं मुसलमानों को और आपको और सबको बैठाकर एक डिबेट करते हैं, जो असल मसला है उसको खत्म करते हैं? मैंने तो नहीं आज तक देखा कि सिवाय एक इंसिडेंट हुआ है पूरे डेनमार्क के अंदर इस सारे अरसे में और वो भी गलत हुआ। आज तक हम यहूदियों के साथ ही काम करते रहे हैं, यहूदियों के साथ ही बैठते बैठते रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई इस तरह की बात हो, तो ये क्यों इस तरह की बातों को आप लोग यंगस्टर जो हाईलाइट क्यों नहीं करते, क्यों आप लोग ये कहते हैं जी आएंगे तस्वीरें खिंचाएंगे? इससे पहले भी मैंने बेशुमार पुराने जो सियासतदान है उनसे एक जी फलाना मिनिस्टर तो मेरा बचपन का दोस्त है ना जी, बस जो बात कह दे, लेकिन वो मिनिस्टर जब टीवी पे आता है, जब वो फेसबुक पे आता है तो वो जो ऑल फॉर वो इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ बकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 4 लाख से ऊपर मुसलमान है उनकी हैसियत जो है वो 10 आदमियों से ज्यादा नहीं है।
4: नहीं शाह, इसमें मैं ना आपको एक बात बता दूं, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो टिंक टैंक है ना वो कमजोर है, क्योंकि मॉन्ट्रेस्को कोई ऑफिशियल इनविटेशन यूएस सोसाइटी ने दी थी और उनने इसको प्रॉपर्ली बुलाया था और उसने फिर अपने कैलेंडर में से टाइम दिया था। जब मुझे मौका तो उसको मिला तो उसने हमें कहा, उसने कहा कि मुझे अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी से, अफगानी कम्युनिटी से, मेरा मुसलमान कम्युनिटी पता नहीं, ये DMU वाले जो हैं इनको ये खत लिख के इससे मांगनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता अब DMU ने खत इसको लिखा है कि नहीं, क्योंकि मैं DMU में नहीं, उनको भी खत लिख के इससे क्या कहते हैं बातचीत करनी चाहिए कि हमारे पास आओ, हम भी तुम्हें मिलना चाहते हैं, हमारे भी इशू हैं, हम भी तुम्हारे से डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम भी फिर सेफ फील नहीं करते। और ये इस तरह DMU को ये करना चाहिए और इसको प्लेटफॉर्म में करना चाहिए। हमारे इन्वेंट में वो आए, हम उससे बात डायरेक्टली करते हैं। जैसे मच्छी एक्सचेंज पिछले साल आया था, मैंने उसे पकड़ के उसे कहा था, वहां पे विटनेस भी है, मैंने कहा ये जो पॉलिसी चल रही है ये हमें पसंद नहीं है, और ये जो हार्ड लाइन तुम स्टेटमेंट दे रहे हो ये मुझे पता है कि 3 मंथ बाद जब इलेक्शन आना है ना, तुम लोगों ने कोई ना कोई काम करना है। और आपको मैं बात बता दूं, ये राजा साहब को पता, आपको पता है कि 1 मंथ बाद हमारा मैंगो फेस्टिवल अगस्त में हुआ था और सितंबर के अंदर आपको स्टॉक लॉन्ग आ गया था, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि इनने कुछ ना कुछ करना है और ये इसी तरह की हरकत करेंगे। अभी एक परसों चौथ इसकी अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले क्लिप आई है, ये चौस्तुकोवी की है और वहां पे इसने फलाइल साम फोन के बाद बात की है और उसके बारे में मैंने इसको एक मेल लिखी है, इसकी सेक्रेटरी का जवाब मुझे आ गया हुआ है। अब हम दोनों का इंशाल्लाह ताला इरादा है कि हम समर फेरिये के बाद मेरी इससे मुलाकात होनी है, मेरी होनी है, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया अपनी पार्टी की तरफ से, इसमें मुझे हाँ की हुई है। जब मैं इसके पास जाऊंगा मैं सारे पॉइंट्स लेके जाऊंगा अपने, मैंने इसे यही पूछने के मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं, मसला क्या है। मसले दो बंदों के मसले होते हैं, आप पूरा कम्युनिटी ले जाते, अब जिनके मसले हैं उनके मसले होने चाहिए। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सबको पता है हम टॉस्टॉप कमून में रहते हैं, पास रहते हैं, उसके मेयर ने आज कहा है कि ये जो प्रॉब्लम हमें टॉस्ट में पड़ी हुई है आप उनके साथ पंगा नहीं ना डालेंगे तो आपको कोई मसला नहीं, आपने बस पंगा नहीं डालना उनके साथ, उनको रहने दे वो जो मर्जी कर दे, क्योंकि वो पुलिस का काम है कि पुलिस उनको कैसे टैकलिंग करती है कैसे। अब मीडिया और डेनिस उनके बारे में बार बार लिखेंगे, बार बार उसको क्या कहते हैं गुजालेंगे, तो मसले ने बड़ा ही होना है, मसले ने छोटा नहीं होना, तो इसलिए मसाइल को हल करने की जरूरत होती है। हम इन लोगों को इसलिए बुलाते हैं दो वजह से, एक कि वहां पे जितने लोग हैं वो पकड़े वहां पे इनको और उनको कि हमें ये चीजें पसंद नहीं, ताकि जितने ज्यादा लोग उनको कहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या कहते हैं इम्पैक्ट होगा। और इस वक्त ये जितने मिस्टर बैठे हुए हैं, मॉक को हो जाए, जस्टिस मिस्टर हो जाए, दूसरे भी कुछ और हो जाए, उनके दिमाग में इस वक्त क्या कहते हैं एक टारगेट बना हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनने टेस्ट वर्ल्ड कप 25 वाले हर चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, और जितनी देर तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे हम इसको काम नहीं कर सकते।
0: शाहब अदनान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं होंगे, अपना तशख्स बरकरार रखते हुए बात नहीं करेंगे, तो मसाइल तो शाहब हल नहीं हो सकते। इस तरह
1: राजा साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल में पॉइंट ये है कि हमें लोकल जहाँ लोकल है, जहाँ जहाँ लोकल हम रहते हैं

0: ही खड़े थे, लेकिन बाहर थे, हॉल से बाहर थे, तो आप सभी बेशुमार जो फ्रांस चर्च के जो पादरी थे और दूसरे लोग कंसर्न, वो आपसे भी बात कर रहे थे, मुझसे भी कर रहे थे, दूसरों से भी। तो उनका एक ही जाविया था कि आप लोग हम लोगों से डिबेट क्यों नहीं करते, आप अवाम में क्यों नहीं आते, आप सियासतदानों के
1: शाह
0: पास
1: साहब, ये
0: जाएंगे वो
1: बात
0: एक
1: शाह
0: काम
1: साहब
0: से
1: आप
0: चुनेंगे
1: क्लियर
0: दूसरी
1: कर
0: से
1: शाह
0: निकल
1: साहब
0: जाएंगे।
1: ये बात आप क्लियर कर चुके हैं कि हर चीज़ के जो मसले मसाइल हैं वो हमने खुद पैदा किए हैं। शाह साहब मसले
0: अरे
1: मसाइल मैंने
0: किए
1: आगे कहा था, मैंने किसी और नज़रिए से नहीं कहा था। हम चौधरी परवेज इलाही साहब को बुला लेते हैं, चौधरी शाफे साहब को बुला लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को बुला लेते हैं, जरदारी बिलावल को बुला लेते हैं, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब हम ये काम करना चाहते हैं तो शाह साहब ये हालात पैदा होंगे।
0: नहीं जी, उन्होंने एक ही लफ्ज कहना है, उन्होंने कहा तानू पुत्र कढ़िया सी मुल्कों ते तुसी ओथे भी जाके उंजे दे रहे हो, लिहाजा तुसी इत्थे ही रहो।
1: शाह साहब हमें डायनेस सियासत
0: उन्होंने
1: करनी पड़ेगी, डायनेस सियासी पार्टियों के साथ
0: कहा
1: तल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे, इन
0: नहीं
1: लोगों की मीटिंगों में जाना पड़ेगा, इन्हें बुलाना पड़ेगा, इनकी कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, इन जमातों की तरफ रुख करना पड़ेगा, तब मसाइल हल होंगे। जिस तरफ हम लगे
0: देख
1: हुए
0: ना,
1: अपने तल्लुकात बनाने के, किसी ने सदर का टाइटल लगा लिया, किसी ने किसका टाइटल लगा लिया
0: ये बात
1: पीछे
0: है,
1: अपनी वक्त बढ़ाने के लिए।
0: ये बात है कि आप उनसे पूछे जो ये दावा करते हैं कि ये मॉडर्न मार्क्स को जो ये मेरा बड़े करीबी दोस्त है, कल उसने जो बयान दिया है फेसबुक के ऊपर, वहां पे खड़े हो गए, वो किसके है? बात असल में ये है
1: वो तो
0: कि
1: डेफिनेट
0: हमें
1: अदनान है, ये बड़े
0: फंक्शन
1: तरीके से पूछते हैं, अदनान लिख के पूछता रहता है, तो आज सारी चीजें शायद सब बाहर नहीं
0: नहीं
1: आ
0: ऐसे का
1: सकती।
0: नहीं, इत्मीनान के पीछे जब तक पब्लिक नहीं होगी, ये मेरी अफायरिंग है, ये मेरा तजर्बा है इस कौम के अंदर, जब तक आपके पीछे लोग नहीं होंगे और फेथफुल। अब ये नहीं इत्मीनान तकरीर कर रहा हो तो मैं पीछे बैठा हूँ कुर्सी पे हंस रहा हूँ और डाने देख रहे हैं कि ये अपने का मजाक उड़ा, ऐसे नहीं। एक बैकअप होनी चाहिए और ऐसे मुकर्रर होने चाहिए कि जो जिस पॉइंट पे वो बात करे वो दूसरे ने जो पॉइंट रेज किए हैं उसकी नफी ना करें, बल्कि उसको अगर वो तकवीयत नहीं दे सकते, अगर उसको समझ नहीं सकते, तो फिर अपने जो छोटे से पॉइंट्स हैं वो पेश करके तो स्टेज से उतर जाए। ये जब हम एक दूसरे को पुशअप करते हैं, भाई इसको कोई नहीं पता, 10 बंदे इसके साथ नहीं है और ये जी ऐसे कम्युनिटी का लीडर बना फिरता है, इससे मसले जो है डैनिश क्या हंसते हैं, वो कहते हैं कि इससे कमजोर तरीन आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें ये चाहिए कि एक थिंक टैंक जो है अगर हम लोकली बनाना शुरू करते हैं और उसको आस्ता आस्ता वसी करते हैं, और यहाँ पे जब ये जैसे मैंगो फेस्टिवल चंद मैंगो से शुरू हुआ था, अब बहुत बड़ा माशाल्लाह लग रहा है जगह, अगर इसी तरीके से हम औरतों मर्दों को बुलाकर औरतों को उनको वो हकूक दें जो इस्लाम ने हकूक दी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि यही टेररिस्ट लोग हैं। देखिए कोई डैनिश रैशिस्ट नहीं है, हमने रैशिस्ट, हम खुद रैशिस्ट हैं और हमने रैशिस्ट पैदा किए हैं। हमें किसी भी डैनिश के साथ बात आराम से तमीज से बात करें, वो हमारी बात सुनता है।
1: बात सुनेगा, आपकी बात शाह
0: लेकिन
1: साहब
0: अगर
1: बिल्कुल दुरुस्त है। अदनान आखिर में आप क्या कहेंगे?
2: मैं यही कहूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए और हमें इंशाल्लाह ताला ये इस पे काम करना चाहिए और हम एक दूसरे की मदद करें। और मेरी तरफ से यूर को सलाम, क्योंकि मैंने अभी निकलने गई, तो फिर इंशाल्लाह ताला सबसे बात होगी और फिर इंशाल्लाह ताला होगी, फिर बस के हम एक यूनाइट हो जाएं तो हमें फायदा होगा फिर
1: बिल्कुल
2: जो
1: बजा
2: इंशाल्लाह।
1: फरमाए शाह साहब, प्रोग्राम को क्लोज करें।
0: ये बिल्कुल मैं इत्मीनान से यही करता हूँ और आपको भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो है एक थिंक टैंक बनना चाहिए जिसके अंदर हम डेंशों को भी लेके आए और ऐसे लोगों को लेके आए जिनका रिलीजन के साथ और जो कमर्शियल और दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो सारे इकट्ठे हों, और इनके साथ हमें चलना है और ये बताना है कि हमने अगर जिंदा रहना है यहाँ पे जैसे आप जिंदा रहते हैं, हमें भी जिंदा रहने का हक हासिल है। तो डेनमार्क का आइन जो है वो हर आदमी को इजाजत देता है कि फ्री हिल और रिलीजियस फ्री हिल जो है तो ये उसका हक है, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात ना की और यहाँ पे डंडे सोटे की बात की, तो ये कभी भी हम सीधा नहीं कर सकेंगे। डायलॉग जो है, और ये डायलॉग वो डायलॉग होने चाहिए कि जिनके ऊपर कुछ बुनियाद हो और जो मजबूत बुनियादों के साथ बने हो, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन देर नहीं होगी, अंधेर नहीं है यहाँ पे, और हम पुराना कानून जो है वो पुराना आईन जो है डेनमार्क का वो बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये राय साहब।
3: FM 92.9 और केबल नेट

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, दुरूसे साबका में सीरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लुत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, अबाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पे अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی، لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا آئے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے، اور وہ اگر اس سے آگے حالت ایسی پیدا کر دے کہ فجعلہم کاسف ماکول، ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا، اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے، جنات سے کاہن کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں، وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं अगली पिछले के साथ।